아덤나 타럼 따비리바세 아카스바니 임팔기 아욕기 타럼 파리니 하우지 궁파 마세다 보저렉리 시다히닥 나시기 시다히닥타 펑비가니 오싱사기 까나바싱 아한 바다 탐저리 오싱사 마쿠 파비 오싱사 마쿠 파비기 마군 싱디 थुमतक तवी नांगतक तवी मनम नुंगसी हली चानिंग बपोक हली हवाई चेंवाई थोंग बदसु रस लेने बगी दमकता मना आसीबु सीजनई नुंगसित की अना बदसु कान हली तेज बाद मना की मकुप दालचीनी की मकुप चांगचक मान हलगा इलायची मकुप न तंखाई अहुम मसी तिनरबबु ट्री जाता कवि अहुमसे तिनबगी पाउडर ग्रेन तरुकता खोही चमस तंखाई अमा नोंमदा अहुमलक चाब खुदिंगी इसिंग लुंबु लुंबु साब खर थकलबदी हकचांगी खुउ तांग चिकपा पोम खटपा अमदी पंगथबदा फनबत नतना इपाई थिपाई बदा फाउबा फाली

0: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯒꯣꯔꯥꯅꯤꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯄꯦ ꯕꯦꯡꯒꯣꯂꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯔꯥꯅꯕꯤꯔꯕꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯄꯤꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯁꯨꯄꯔ ꯂꯤꯒꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯠꯁꯇ ꯁꯤ ꯋꯥꯏ ꯁꯤ ꯑꯦꯜꯅ ꯁꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯌꯨ ꯑꯣꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ ꯃꯉꯥ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯏꯈꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯍꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 1951ꯗ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔ ꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯨꯞ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ 1952ꯗ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔ ꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 16 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ 1951ꯗ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔ ꯁꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯇꯛꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯥꯔ 2026 ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯋꯥꯀꯠ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯃꯣꯜꯆꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 50 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 54 ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯔꯦ ꯐꯥꯔꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯅꯨꯡꯉꯩ 4, ꯀꯔꯕꯥꯏꯟ 3, ꯄꯣꯝꯄꯤ 3, .22 ꯔꯥꯏꯐꯜ 2, ꯂꯦꯊꯣꯠ ꯒꯟ 2, ꯀꯔꯕꯥꯏꯟ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ 3, ꯗꯤꯇꯣꯅꯤꯇꯔ 5, ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯠ 2, IED 2 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯩ ꯃꯔꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯒꯅꯦꯁ ꯆꯥꯊꯨꯔꯊꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯄꯗꯤ ꯃꯨꯔꯃꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏ ꯂꯣꯔꯗ ꯒꯅꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. ꯑꯦꯟ.ꯗꯤ.ꯑꯦ. ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 17ꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 17 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯅꯚꯥꯒꯤꯗꯥꯔꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯃꯪꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 17 ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 25 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ ओमानगी समुद्र खोंबालद लैब कमर्शियल वेसेल एम टी ई एल गयादा एटेक जाथारखिबाबु भारतना यानिंगदब फोंदोख्रे लैबाक अदुद लैरिबा भारतकी एम्बेसीना थादोरप वारोल अमादा हाय हौजुग फाउबी ओइना भारतकी क्रू मेम्बर तरा हुमदोय कनबा ngamले मखा ताना थिब खंगदना लैरिबा भारत माचा अमागी खोंगो लैबगी थाबकसु चाथारी मफम असिक अथॉरिटी सिंग पुंदना ओइरिबा फिबम असिक कुमना येंगसिली हायना मखा ताना फोंदोखि केन्द्रीय लघु सिंह याफायुम्बाल मंत्री शिवराज सिंह चौहान न्यू दिल्ली की कृषि विज्ञान केन्द्र इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लौमीसिंग उन्दना वारी सानख्रे सोशल मीडिया थगलप वारोल मंत्री हाई सरकार असिना कृषि विज्ञान केन्द्र की मतें लौमीसिंग की खुदोंचादब कया मायोनब अचौब थौदांग लौरी मसीना लौमीसिंग अनौब मखल के टेक्नोलॉजी क्या सिजनब ngamannaba पांदम थमली श्री शिवराज सिंह चौहान हाय तोान तोब राज्य लोनना एम ओ यू सही तौदना कृषि विज्ञान केन्द्र मपांग कखल अगम्ब था हटरी तरानपानुब ब्रिक्स मिफम न्यू दिल्ली लोसनख्रे थरूम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हाय ब्रिक्स मिफम मालेमद थेनरीब खुदोंचादब कया लोसिंब कया वारी सानदना मोब खुना की याफनब थर क्या पाखेप ngamलगनी पेंडेमिक क्लाइमेट डिजास्टर सप्लाई चेन अहोंब क्या लागलीब असिगी मतांग लुसिंब क्याना मिफम खनखी भारत की ओइना वेपन एंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज नोंसुप बेंगोल की पूर्व मेदिनीपुर लिंखलगनी नोंसुप बेंगोल वेपन एंड मिसाइल टेस्टिंग रेंज लिंखनब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ पुखलप प्रस्ताव अद राज्य की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अयाब पीखिबनी हाय राज्य चाखोनब होनब प्रोजेक्ट असिना चौना मतें पांगलगनी जून पुत लिंखटकदरीब टेस्टिंग रेंज असिना डीआरडीओ की अहम सुब मरुब हब ओरगनी अतै अनी अदुदी उरीसा की चांदीपुर साइट आंध्र प्रदेश की टेस्टिंग सेंटर नी भारत की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है खब मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी उरीसाद लेरे लॉन्च कॉम्प्लेक्स अनी मथौ तौरी फोंब पाचे पाद नाउरेम विक्टर लेरे विक्टर
1: थगचरी गोरानी तमेंलों जिला खुदलाई पाइबसिंग एटेक चथरखिब लैंगा की लोसंग थों लोनसिन की खोंजंग हांदोकनब सरकार ने मियाम अपील तब यावना तोान तोब पाउसिंग फोंनरीब पाउचे मरोइब पाउसिंग ओइरी पोक्नफम पाउचेद मफम अनीद खुदलाई पाइबसिंग चथरखप नोंमई की एटेक मतै मनाव यावना कुकी मरी सिरे अंगांग अम सोकले हायना अहान हेडलाइन तौरी पासीम तोान तोब हेडलाइन लोनना सनालैब हुयेन लानपाउ गानफ्यू मेल पीपल्स क्रोनिकल अहान हेडलाइन तौरी मणिपुर की हौजिक ओइरिब इशुसिंग की मतांग वारी सानदुना अमसुंग मियाम की इहुल खंगना सरकार ना थबक पाइखलकनी हायना गृहमंत्री अमित शाह ना थाजब पीखिबगी पाउ सांगा एक्सप्रेस इंग्लिश अमसुंग मणिपुर एडिशन दा अहान हेडलाइन तौरी लैंगा की लोसंग थोंग लोनसिनबगी खोंजंग हांदोपियु हायना एमएलए टीएच राधेश्याम ना फोंदोकिब वाफम सना लैबाक पाउचे की अनिसुब हेडलाइन तौरी पाउसी मणिपुर मेल की ना अहान हेडलाइन तौरी इंग लिंग तरतरुक की पाइखलप वाटर सप्लाई स्कीम सिंग लोसीदना लेरमले पाउ पोनफम पाउचे की एंकर कलम फोंगली हाईवे हांदोक्तुना गाड़ी चथोक चसिन तौब हौरप शांति हंजिलप की खुदम अमनी मुख्यमंत्री युनाम खेमचांग की वफम मणिपुर मेल की अनिसुब हेडलाइन तौरी मणिपुर मियाम की मितमांगदगी कक्चिंग की पुमलेन पाचु तपना तपना मांगीगदौरे पाउ हुयेन लानपाउ की अहम लमाइद फोंगली नेशनल हाईवे कुंथ्रा तरह ड्राइवर अयट अपन लेतना चत याहनब आई ओ सी एल डीलर तक्सन की पाउ पीपल्स क्रोनिकल की अहम लमाइद फोंगली ड्राइवर चथरब स्टेरिंग पाइदब की खोंजंग हांदोख्रे पाउ सना लैब पाउचे की अहम लमाइद फोंगली तमेंलों टाइम्स जिला था की नुपा नुपी की अंडर 14 अंडर 17 अंडर 19 की इंटर स्कूल ट्रायल सेलेक्शन फॉर फुटबॉल डिसिप्लिन था की तरमापन पांथोकलगनी अहम हेडलाइन तौरी हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस नागा मिचम तरुक हाथीब मरी लेना अचुब वयल पुथोपीनब नागा युद्ध सिंधुना सेनापति वकत मिफम फमकी की पाउ अहम हेडलाइन तौरी गोरानी
0: थगचरी विक्टर हौजिक अरोबद मरुब पाउ अमुक हना मुख्यमंत्री युनाम खेमचा हाई इम्फाल दिमापुर लंबी पेसेंजर बस चेनब होगीम राज्य शांति हंजल उत्पनी गृहमंत्री अमित शाह हाई मणिपुर चमापन याखई माथोद बेस इयर ओना एन आर सी चनहब केंद्र सरकार ने खनरी था तरतरेतगी था चुपना सेवा संकल्प अभियान पांथोलगनी गृहमंत्री अमित शाह लाथोख्रे पाउ लोजरी

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हेलो
8: हेलो
7: हेलो, गुड मॉर्निंग मणिपुर की थोरमनी का नाम है बीरपनो।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग।
1: आई मेरा थाय थंगई बन जनाम लेकाय दिगी उसम इबोचो
0: होय होय इबोचो थोरम द तराम नोक चेरी करमबा फिल्म से तामिन सिगे
1: अपन के मैडम स्टार्ट फिल्म दि मैम सोमी कुमार ना सत्ता
0: हाय बी हाय बी
1: गो गो अमुक तो उनके खाली नहीं जब मागी लोगों को भी मापा हुआ होगा इंटाउ बुदो अदम तक ताज़ा किया ना
0: होई होई हरी भाई सही से ये कोई की स्टार फिल्म दे इन्हें हैबिसी में दिच्छो मेको आ होई ये कोई यंग जगे को ले रखा दिसुं सोई सोई दना खुदोल तम जगे अदम अक पुमा से फिल्म सही दे दिया कोई किसी दे योग जड़ रहा तो पैसे मक
1: Thank you, Mela.
0: Thank you.

0: ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯄꯨꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ, ꯅꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ, ꯔꯤꯝꯁ, ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯠ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯊꯝꯗꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤ 2055 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ, ꯔꯤꯝꯁ, ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯖꯤ. ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ
1: ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 55th ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯋꯦꯜ ꯋꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯐꯪꯖꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯐ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯦꯟ ꯒꯦꯠꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ.ꯁꯤ ꯂꯥꯁ ꯏꯌꯔ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕꯅꯤ, ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯔꯦ, ꯐꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯐꯪꯗꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯃꯦ꯫ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ, ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ, ꯅꯔꯁꯤꯡ, ꯄꯦꯔꯥꯃꯦꯗꯤꯛꯁ, MTS, ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯌꯥꯟꯍꯟꯕꯗ꯫ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ, ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤ, ꯑꯥꯏꯒꯤ, ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ, ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯒ, ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯁꯦꯟꯂꯤ ꯑꯅꯧꯕꯗ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ. ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯃꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯖ꯭ꯋꯦꯜꯇꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯜꯂꯝꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯥꯔꯗ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ, ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ, ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯖꯟ, ꯑꯦꯅꯥꯁꯊꯦꯁꯤꯁ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯗꯀꯤ ꯇꯦꯁ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯐꯪꯍꯜꯂꯒ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤꯗ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯄꯨꯡ 5-6-7-8 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯕꯇꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯉꯥꯏꯅꯔꯝꯕꯁꯤ, ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯦꯐꯔꯠꯅꯤ, ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯤꯌꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ. ꯑꯚꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯤꯌꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ 150 ꯕꯦꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5-6 ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯣꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ 13 ꯄꯤꯈꯤꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯐꯠꯇꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯂꯦ ꯇꯧꯔꯦ꯫ ꯍꯟꯗꯛ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯀꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯠꯇꯞ ꯑꯃꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯕꯦꯗꯇ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗ ꯁꯝ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯔꯗꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯒꯤꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯥꯏ ꯁꯤ ꯌꯨ ꯀꯤꯌꯔꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6 ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ achowa ano version achievement da khugi maternity block achowa block four story building ama saraga phongdokre masida khoi 200 plus mother khatangi angang pokpadagi angangi ladies gi treatment puna makki tongana isolated oiba yam phajaba building ama laikre adagi khugi blood bank ki tongana department achowa building ama hanglok chakre aduga handak ki tha natraga october gi manung da khoi na cardiology nephrology gi separate oiba department ama su koi saba loijare masida ship tongna ba khuyam kan hona jari aduna cardiology intervention adagi nephrology dialysis tagi hauraga khu renal transplant gumba mayamda kanaba yamna hengalagani habiga ithaja batham jage aduga recently thama mukhi mangda khu na biplane radiology department gi equipment nama puja rakhi masina radio intervention haiba gi subject amagi role ni masida lagtu ise khu na surgical intervention hairaga di brain da kai gumba bleed ama tauren khallasi adugumba si akoina surgery yaugdana radiological procedure ma tauraga yam thuna recovery tawagi yam chakhat pakula yam so khoina thamani mang da hapchan jagare masi akoi gi even notice ta khoina aham bani aduga masi to podagi akoi gi praja singna ma panda chatna jiki facility si sinna ba hore masi si yam acho wesi mena mane khoi gi matung tarak poda khoina next 1 year gi target ta government of india na akoi gi anowa master plan amagi makha da phase hum ठोक ना रिम्स की चौखट ना बगी रिम्स की अरीब हॉस्पिटल से 1968 तक ही सागे बने अदुना मधु की लाइब हॉस्पिटल से लिसल लग पड़ेगी आकाय तो ही थोलक पगी इशू लाग पड़ेगी या कोई ना मधु की मास्टर प्लान की प्रोजेक्ट की थमजग रहे अदुगा में ना अदु की आया बस यो कोई तो पीरक रहे अदुना फेज वन सीधा कोई ना अचो 750 बेडेड हॉस्पिटल लमा सारगा अरीब हॉस्पिटल लगी थांग दो रखना वो कोई मधु की टारगेट चाहिए अमन सीधा संगजन जगनी अदु दगी है ना अतोप अतोप स्टाफ की क्वार्टर टाइप 3-4 की संगा ग्रह 120 मसी यो कोई की रिम्स की ओइना दी मणिपुर की ओवरऑल यंग बदा यामना फजना साब क्वार्टर सिंग द याम फजबा फैसिलिटी ले आइना थम जगे अदुगा कोई यदि लाइर बगी स्टेट अमा ओइ बनी ना अखोइ ना मयाम द होनरी सिदि फ्री ट्रीटमेंट पीबा फ्री सर्जरी तोंगनाबा यारिंगे एडमिशन तोरगा याम थुना सर्जरी तोबा अदुना अखोइ ना हंदक याम कन होना बदगी फैकल्टी पोस्ट कुनिपा ना कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन तोबी रही याम कुइ रबाई मतुंग द चही कुन मुकी मतुंग द सिना अखोइ की सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट की फैकल्टी अखोइ लव हो जग रहे अदुना लास्ट मंथ मिनिस्ट्री द इंटरव्यू तोगरे याम थुना हाइदो अगा डिपार्टमेंट of cardiology adegi urology adegi gastroenterology adugumbagi super specialty ki doctor singh ju hapsal lagani akoin masi ama chowa development ya duga masi ki demokta I government of india minister of health of family welfare da thagat chaba phungdok chari koi ki institute of national importance haibasi akoi 2019 dagi rims ki koi administration na ta lagala ko koi ki demand amani aduna ngasi akoi na lei basi ki institute of national importance aina koi aims like aina hairi si aims makti natte but aims ki thakta aduna masi akoina handak recent board of governors ki mifamama jun gi tang tarani panda jepi nadaji na preside toroga koi delhi da tokjarui madu da su adum akoida sigi process ya koi chatha gani haibi gi thajab pirakhi aduga handak koi gi honorable cm saab na unabiru bada thambirak padu koina hana lairiba adugi continuation amani haina ina logje aduga yam thuna government of india na khugi bi assurance su thabak oina ondok birakani haiba gi thajab lai jai aduga lairaga di khoi once akoina ini haiba status sida la agadi ngasi ngasi oiriba khugi rims ki status sidagi upgrade ama tok dini aduna research bu oiro na traga infrastructure bu oiro adagi medical course bu oiro so adu overall akoi gi hengatar rikto si quality of patient care adu mathang da research adu mathang da medical education aduna khoi gi praja overall khoi gi manipur da natana neighboring state ta lai ba nat overall all india gi health care da yam chaung na change ma lakni haibo gi thajab ai thamjari masiga loina loina na aina praja da thamjani wa appeal di environment friendly hoina ba chokhoi na kitang hotna je ngasi gi tanja ase lokjara ga praja da appeal tokjani ngi si khoi gi rimsa lakho ma tam da khoi gi plastic ki poche jing ge yaringi pubi rakta ba aduga isha gi ising thakna ba ora ga su likli gi bottle na ga dum akhoi gi achowa ke nomada khoi ju singchi yaringi free the pina bo khona jai yamna nungai ta ba sinchi ok sieng ga su everywhere da khoi plastic bottle thek ta langthok pi ba aduna drain da block ta wa da yeng wa yam thiwa mo ai da go hospital gi periphery da su no smoking area ne khoi gi any institutions 100 meter da khoi gi lai wai da bun adu bu praja da khoi na appeal tok jani ngi sidi rimspur lun na nana thamma da mateng pang biu adu ga plastic pu bi rakano yaringi khoi gi khadi gi ore su phi gi ore su bag kuma pu bi ro ising ना बा कोई भंगन ना बहुत ना जी अदुना लिकली की बोतल पूवी रहो अदुगा कोई बता मेन गेट की नाकन ना वेंडर्स फम्बी बचिंग ना सुख कितंग मैं आऊँगी प्रजा की येंगा तो पर जगा द फम्बी रगा रिम्स की लाइरी बा एप्रोच रो ꯄꯣꯠ ꯁꯤꯗ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯗ 55th ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯝꯁꯄꯨ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯕꯦꯁ ꯋꯤꯁꯦꯁ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
0: ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ

0: 이세 시타한 적이 부갈로이나나 땅가가 쓰기오이나디 기칭란 독자바 마땅하신들 루신저리 더럼 선독나 따한 저리 바시 아카스반 인팔기 FM 상하이 채널대기니
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: अदोमना चंगाई चैनल दगी तोंगान तोंगान बा नुंगायरब थोरम कया मथंग मथंग ताबिरी हौजिक चैनल असगी मखा तारकबा नुंगायरब थोरम कया गिदमक अदोमगी एंकर इरुंगबम मनीषनादा खुशी नजरी
3: थगचेरी कोंजंगबम निर्मला चनु आगस वानिन फालगी एफएम संगाई चैनल ताबिरी बपुनमकपु अमुकाना कुरुमजरी तरामनो उचेरी हौजिक पुंपम मसेदा पुदुन लाचेरी रेडियो लीला लाइगी सुइदनबा लीला इबा मनी युमनाम लीला पुथोकपा माइबम ईशाकांता पुथोकपद तेंबांगबा अथोकपम सुभाष चंद्र सिंह म्यूजिक चनमबम रिंगो मैते हौजिक लेजरे रेडियो लीला लाइगी सोइदनबा।

0: अरे यार, अब हम चाहते कब थोड़ो।
1: दादा ली नहीं रही है दादा।
0: अमुमचा नखोई की स्वस्थी तो सोलर होय ऑपरेशन तो कुदा डॉक्टर तो दिल्ली सत क्रिए ना मैं आम वा वा वा गांगने नहीं सी चुम्रा हाँ
1: अचुमनी दादा अचुमनी।
0: अदुदी है स्वस्थी सोंद्र शो आई वों ना ये लाऊ की बस सेंड दुदी हाई ना की बस मतम द पी द बियार रोई
1: दादा दादा यार यार इग दी मतम खाजिक तंग सोंदर इग पिजे के दादा दे के नोनी दो दो दो दो थोबा मत न मा लाकनी न हेरम मे बा मा हेग लाक बगो ऑपरेशन ने दा दोर ग दा नु दोर दे नी दादा आई छो दे नी
0: ए आई दी हाइन खिबा मतम सोइबा सुगा यार ओ हाइ खिबे दोनी
1: अस दादा दु मा हे मिनु द
0: आई ने लौफम म मगी येना खोना ब निगाई संगदा न ब खरे लैरी मधुगी उकिंदु द शेल दो पीरु दुइनी खाबा ตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาต
1: 몸 동인 하이깁도
0: 허허허허 아도 닝싱 하이브니 어
1: 허이
0: 아이살라게
1: 파니
0: 아이살라 아이살라
1: 파니
0: 잘해봐 싸게 파고 아이살라
1: 파니 따다 가이노이 또도시고 가이노이 또도시보시고 가이노바 인 하이도시 아이노직 신도시 가이노바 라이비 라이비 너무 따브로 라이비 헤이 사드 클라스는 부터 돌아내는 거 이거 꼭 시험 때 이거 이마 엄마 우리 좀 인터뷰를 연기해 미.

0: आकाशवाणी इम्फाल मरांगठी भेबीना पाव पाजरी अहानबद मरुइबो पाव गृह मंत्री गोविंद दास कोंथौजमन हायरी हिंसाना मणिपुरबो शांति अमसों माउसागे फिबम हाजिल हनबगी लंबीदा चंगसिनबदा अपन बथोन बयाहलोय मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हायरी एनआरसी गी वाफम असे बीजेपी मिखल गी मेनिफेस्टो द हानादगी याउरबनी अमसों दोल असिना हानादगी हौना एनआरसी गी दाबी तौदुना लाखपनी नागालैंड की तुएंसांग टाउन अमसुंग चेंदाम सेदल द युथकपदगी ओइरम बयाय हायना चिंगनाबा मवोंग दा मीमापन छिख्रे अमसुंग केंद्रगी गृह मंत्री अमित शाह ना हायरी बीजेपी ने लुचिंग बे एनडीए ना सरकार पाइबा राइजो कुनमा थ्वय दा इं कुमजा लिसिंग अनि कुमापन गी ममांग दा यूनिफॉर्म सिविल कोड जना हलगनी तोलें कुकी विलेज थोखीबाद लिंजाई सिंसित लेखीदीब मचानुपा नौमें पान सोब राज्य की गृह मंत्री अमित शाह नाइट फोदी सोशल मीडिया थागत वारोल अवाब फोदना श्री गोविंद दास अशोप सिंह अथब फगलपरी मंत्री ने हाई मरा लेजदब मिचम सिंह की मथक हिंसा चथब है चलब या मरा लेबसिंग की मथक अकनब थबक लौखत्कनी थौदोक अदुगी अचुंब खंगदोकनब अमसुंग मरा लेबसिंग मसक खंगदोकनब अमदी अकीब अमसुंग मिचंग मिखाई नाइदना आइन गी लौखत्पन थोकपा थबक लौखत्नब मरी लेनबसिंग द खंगनकै हायरी गृह मंत्री ने हाय असिगुंब लुरब तंजा असिद हिंसाना मणिपुरबु शांति अमसुंग माउसागी फिबम हंजिलनबगी लंबीद चंगसिनबद अपनब थोनब याहलोय मान हाय नागरिक खुदिमक असोय अंगाम थोनदब हायबसिना पुनमकतगी मांगजिल थाब थबकनी बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने सिंधुना सोशल मीडिया की मतांग वर्कशॉप अम हौचि बीजेपी स्टेट ऑफिस थम्बाल संगलेन इम्फाल पांगथोली वर्कशॉप असिद बीजेपी मोर्चा डिस्ट्रिक अमसुंग मंडल सिंह सोशल मीडिया टीम सिंह सरुक यारी हौदोपगी थोरमदा दोल की स्टेट प्रेसिडेंट अमसुंग राज्य सभा एमपी के सरदा देवी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान अमसुंग थौनाउजम बसंत कुमार एमएलए नचिंब सरुक यारी वर्कशॉप अदुद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान हाय एनआरसी की वाफम असि बीजेपी की मिखल की मेनिफेस्टो द याउरबनी अमसुंग दोल असि हानदी हौना एनआरसी की दाबी तौदना लापनी
1: द डिमांड ऑफ एनआरसी सि बीजेपी की निशनें तंदनिंग बीजेपी की मैनिफेस्टो यावनी 2022 के अगस्त की तंग मनादा और एवं जिमनी से विभिन्न बाय एनपीएस मा मसाना असेंबली द एनआरसी सदा बेदबनी हैदराबाद द मुख तौरकांदा एनआरसी डिमांड ऑफ बीजेपी की निशन मतदाता कनाबो ऑर्गेनाइजेशन अमतने एनआरसी डिमांड तौबले अब बीजेपी आगे पार्टी की खुनाद होंगे तौर चेंजेस तोहान चेंजेस तुम खल एन आर सी से तब तोनी लाखी पार्टी
0: लैबाक असिद ngasi गणेश चतुर्थी पांथोक्नरी नुमित असिना लाखपदा लुचिंब क्या मियामदा यापा पाउजिल पीरी राष्ट्र

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून.
1: गुड आफ्टरनून सर.
0: तराम नोकचरी ऐसे की लाइबक फबा. गुड आफ्टरनून लेडीज की अहान बा कॉलर सो ओई विरे कॉल तो विरे क्लिक सी कना ओई विरे वनुम तंग हैबी
1: सर. उस तराम नोकचरी आई ओई नाम मे रे कई नवरे बिनाने सर.
0: तराम नोकचरी ऐसे सी गुड आफ्टरनून लेडीज की इसे खन बगे थोरम सो ओई रे करी करम बा करी फिल्म की इसे ताबी दोइनो ऐसे सिबो लामई फिल्म की पुष्पा रानी की नाइटों खोंजिल राजेंद्र ओक्रम ने सेरिंग बा ओके नमाक्षम ना सेरांग भी सही सोई भी दोइनी को नसी सिबु करी मथेन उनबी खर बगे गुड आफ्टरनून लेडीज की अहम कॉलर सो फिरे कॉल तौबदी मैं इंजांग अहब चानी चाहिए लाकदो जालू थेंगे इसे मतंगी हौरमे इसे खुद तमजरब मतंग इसे खुद तौजे
1: थगचरी
0: इसे तमजरी मैं पुनः तमीन से

0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून लेडीज द तराम नो उपचेरी सनम संतोक तगी बीवी है बीबी को करी करम ब फिल्म की करी सही तासी के
1: लंबा चलेंगे कुछ कवान में चटवा यू गांधी यू में इतना वोटिंग में चलाऊंगा तराम मरी नहीं पान बता जाए कुछ
0: इसे इसी यम खुदा ने सुखन भी रखो माली सैरेंग ब सैरांग ब सही सकले ब पूर्ण नमक चुम ने सुहाई भी रही करी तो बिरो मिनो हो सिबो हाय हाय करी मतियन होना भी हो गई सिबो अहान ब कॉलर द नंगा थोंग ब अतुगा अहुम सुब सिन खोंग द्रुम इंसान अनि सि मथंग लाइफ पोनिंग प्रोग्राम लेब मतम ददी मयाम सि यंग बिबे याब इंसान सिंग ओइबा तारे हाइज ब तारे कोल सि याम दाव याब म ओइ इसे से कुदोल तम जरक प यार द्रो
1: औ यार ने तुम याम पुन तामिन
0: हाय हाय इसे कुदोल तम जरी मयाम पुन तामिन से

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून थोरम द तरामड उपचरी मोरंग थेम जेनी है भी बको करी करम व फिल्म की करी सही ताबी दोइनु गसी सिबो
1: आई डी मिटी ना कल काउ गुड
0: कोल सिंह असी ना हान व फंगो ए बिदरा
1: हां
0: कोल सिंह असी ना हान व फंग बिबो ए दरा
1: नोटे
0: आई की नपी तम नराय की करम ब इसे ही बिदना
1: आ तगो मुसी माय थोंग रो लंबी ने सोबो
0: उमानंद मदी माधुरी के पुन ब कोंजेल दा उमानंद ने माधुरी मालियम लैमा अहुंग के पुन ब कोंजेल दा रंजन इंग थौजान सेरिंग ब राहुल ब्लू ने सेरांग भी सही सी विदोनी का हाउ जिक सिबु रेडियो तान तान करी तो बिरम ली बनो
1: पी तो के तो रे
0: याम ना लाइव फब कोलर मसु ओरे इसे खुदोल तमजरक लगे मैं हम पुने तामिनर्स

ताहन जखीबैसे इसीग लोनना गुड आफ्टरनून लेडीज लाइफ रोनिंग प्रोग्राम लाथोब मतंगद लुशनजरी थौरम से कॉल तौरना सरुक याबी थौरम लोब फाउ ताबू थागत फोंदोजरी इंजीनियर्स ऑन ड्यूटी लाइसम सरद थांगजम हेम्ब ड्यूटी रूम पुबीखी गिरीजा लौरेंब आकाशवाणी इम्फाल हौजि मतंग थौरम गीत मलागीदमक खुराइजम वेवीरोसनीदा सिनजरी

धन्यवाद मनी सना। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

श्रोताओं, आज सोमवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। तो सुनते हैं ये पहला गीत, फिल्म का नाम है रोजा। आवाज दिया है KH चित्रा और SP बालासुब्रमण्यम ने। गीतकार है PK मिश्र और संगीतकार है AR रहमान। तो सुनते हैं ये गीत।

आइए अब सुनते हैं शोर फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वरों में एक गीत। बोल संतोष आनंद के हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से गाने नए पुराने, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं गुलाम फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में एक गीत। गीतकार है समीर और संगीतकार है जतिन ललित।

आइए अब सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में एक गीत। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, वो भी गीतमाला कार्यक्रम के लिए। लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम भूले बिसरे प्रस्तुत करूंगी, वो भी कंगला चैनल में। तो मेरा इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: Western music tabiri. Tongan-tongan ba thorum sing sendok tu netahan jari festi Akash Fanin Falgi FM Sangai Channel degeni. Hause nung tilgi punggohum tari Manipuri da pau tabiri si.
1: Akash Fanin Fal, marak tibia bina pau pazari. मुख्यमंत्री यमुना खेमचान हाई एनआरसी की वाफम असी बीजेपी की मिखल की मेनिफेस्टो यौरबनी अमसुंग दोल हानदगी हौना मणिपुर एनआरसी चत्नहनब दाबी तौदुना लाकपनी इंफाल की थंबाल संगलेंद बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने सिंधुना पांथोप सोशल मीडिया की वर्कशॉप अमदा वाफम असी फोंदोलदुना मुख्यमंत्री ने हाई बीजेपी ने तौब अफब थबक मयाम अमा इं कुमजा लिसिंग अनी कुलहुमदगी मेदगी थोरखिबे इरांगना नमतखिदुना मियामद खंगनब ngamdre maram aduna dolgi social media asi hena activate taw ba changi thawram aduna dolgi state president amsung rajya sabha mpa sarda devi ne hai sarkar asina miyam gi yaphana ba gi damak local liver thabok thawram sing miyam da khanganba khara wan ure maram aduna dolgi social media team singna sarkar gi thabok thawram sing asi khanganaba gi damak hena active oiba tangai phade हौदोपगी थोरम अदुदा दोलगी एमएलए सिंग अमसुंग अतै लुसिंग बसिंग सरुक याखी जिरीबाम पुलिस स्टेशन दगी खारम द जिरी तिपाई मुक्लम बिदा किलोमीटर 13 नि थोयरम चलगा लैबा खेदागल खुंगंग द ngarang nu midang masak khangda ba miyoi singna mi leinadra ba yum ama chakhum ama amasung dukan ama tumna mai thadok lamle aikoi gi jiribam paumina police ke pau paladna hai mai chak paduda yung gi polong kya amasu amang ata thokre police na su motu case ama lokatuna makha tana thijilli इम्फाल जिरीबाम लंबीद ngasi जिरीबाम लुमदा गारी अमत थोरकरे हौजिक जिरीबाम द एलपीजी टैंकर तारा अमसुंग थाव टैंकर चाम तारा अमदी अतै माल पोबा चहुम मरफुद्राउम द याउना पुन्ना गारी चंगा तराउम द पंदुन लैरी मरक असिद इम्फाल लुमद गि संखिबा कनबो याव आहांगबा माल गारी सिंग ngasi आयु नोने बजा योखरे ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजुगी याखैनि थै शुभ फाउंडेशन डे थासी तरा तरुता मणिपुर प्रेस क्लब इम्फाल द पांथोक लगनी थोरम मदुद मुख्यमंत्री यमनाम खेमचान उप मुख्यमंत्री लोसी दिखो अमसुंग गृह मंत्री गोविंददास कोंथौ जमन सिंगब सरुक यागनी हाइरी गृह मंत्री अमित शाह ने हाइरी भारत मखल मखा क्या की लोल सिंह लेबा असिना लेबाक असिगे ख्वादगी साव शक्ति ओइरिबनी ngasi hindi divas ta piba paujel amad mahak na hai hindi lol asi atopa lol amanga sang tanabada tanaba lol nate अदुबु जातीय अमत ओइब रिपुनबु समनालिब मरु ओइब लंगला अमनी गिरेमंत्री ने हाय कोलोनियल माइंडसेट तगि नाथोकनाबो होनाबद लोल न मरु ओइब थौदांग लौरी मान हाय ब्रिटिश के आइनसिंग भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अमसुंग भारतीय शिक्षा अधिनियम न महु छिंदोलिब असि वही ओनथोक बखक नते इसागि सौथोकजब अदु अमुक हन्ना लहेनबनी गिरेमंत्री ने हाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखा द हिंदी अमसुंग अतै लोल सिंह असि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ख्वादगी मांगुल थाब तांकक उब फंगले अनोबे एजुकेशन पॉलिसी की मतांग दे श्री सान हाय थौसिल असिने इमा लोल बुमाई मसिंग तंबगी मयोल ओहेली माक ना ना सिंग द मसा मसा की मामा लोल तमनाबा मसुंग मामा मापा ओइबसिंग ना युम युम द वारी छानाबा द लोल असि छिनिनाबा दक्षिण के न्यू दिल्ली द ब्रिक्स फैमिली सिंग अनि कुंतरुक माइ पाक ना पांगथोकिबा दोगी द मंगाक्षेल मंत्री राजना सिंग ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द नुंगाइबा फोंदोखरे मान हाय माइ पाक लिबा असिना मालेंगी फंबाक द मुतपा नायरा रोइदबा खुदम आमा थमलमले मान हाय सिंगथा निंगाइ ओइरबा न्यू दिल्ली डिक्लारेशन छै तोंनकिबा असि इसम जंबा डॉक्यूमेंट अमख नते मसि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गी लमजिंग मखादा मालेम द भारत न पिबा इथेल हेंगलाउलिबा अदुगी वारोल अमनी ऐतिहासिक ओइरबा ब्रिक्स समिट माइ पाक ना अरंग न्यू दिल्ली द लोइसिनखरे India Met Department Hairi Hayang Assam Amsung Arunachal Pradesh Jauna Delhi Haryana Chandigarh Punjab Amadi Nokpok Thangba Rajasthan Da Akanwa Nong Chugani Gujarat Na Hayang Ka Hena Kanna Nong Chugani Haina Orange Alert Lautokre Weather Agency Asina Hai Lakliba Numin Ini Humni Asida Andhra Pradesh Karnataka Ka Thangba Charuk Tamil Nadu Puducherry Amsung Kalai Kalda Kanban नोंसित अमसुंग अखा राव याउना नोंग चुरबयै आसिगुम फिबम आसि आसाम मेघालय छत्तीसगढ़ गुजरात अमसुंग उत्तराखंड छु हयेंग थेंगनारबयै हायरे भारत कि नुपामसुंग नुपी टीमना हॉकी गि जूनियर एशिया कप टाइटल लौरे चाइना गि मोकी द ngarang सानाखिबो फाइनल मैच द भारत कि नुपा हॉकी टीमना साउथ कोरिया बो पांजल मरी अमदा माइथिबो पिदना अमु हन्ना टाइटल लौखि हदकि आसि थारगा भारत ना टाइटल आसि लौबा मरी रख सुरे Barat ke nupi hoki tim na final da yumbu china bu panjal ama sinoda thoidna title loki nupi gi tim so title asilo ba omlak chure pauloi jare

0: 임팔 소허기 매월다 꿈자가야 농주 농사마욕 너바나 사품 가야르바 강라기 프라돌란 게아나 두로잉감로이 랩리 람다마시 하우크라바 이티하스키 와리 게아우리게 되베기 सहीचा क्या सांगलवे इतिहास की वारी कया फुमदलेरी कंगला गिलेरो नुंगदा मणिपुरी इतिहास की ख्वाइरेगी मरोबे कंगला येलोंगैदेगी हौना निंगथोरोल कयागी कोनुंगैरमी मफमसदा लमदमसिगी राजनीति धर्मनीति लाइनिंग लाइसोल इराट पूजा कयागी मफमोइरमी
1: अदुंगै येलोंगैदा लाइजे इहौरक्तुना मालेमले कोई पुंबा इरो नुंगदे लुखरबदा कंगलागी पुंगना माले मयोल ओइबना ख्वाइदगी वांगबदगी लेकोइबुंग अतेइदगी हान कंगी हाइदुना कांगला गौकी कांगला हाइदग कोनुंगबुसु खंगने कांगलाबु कोनुंग कौबगी मतांगदा अरिब मैते खुई लारिक साकोक लमलेंदा खोंगलम तरेत न कांगलाबु कोंदुन चेली हाइबगी दमग कोनुंग कौकी हाइन इरमी कांगलाबु कंगले सुमतोंग पान लांगोई सारोपुंग हाइन सुखंगरमी
0: सही चा क्या की ममांग देगी नर्सी फावदा लम्दमशी की मियोशिंगना कंगलादा अरूब लाइफ़ कया अरूब खोंग मरु कया पुंग कया लायो रवा ही आई कया लई है न था जन रखली कंगला की मेन शुरू नुंगोई भी यावरे भी ओक्षंग लांगशंग अमदी मरु एवं खोंग कया की मरु शिंग खाखोंग लाइखोंग मरोंग खोंग लिल्हा खोंग पिशु खोंग सरोई खोंग यांबी खोंग अमदी नुंगजेंग ना सिंबा कयासे मैते जातिना की न लुना निंगना बम फमनी
1: मैते की लाय के मरी लेना बा थाजने बी वारी संगी मटुंग इन्ना कंगलादा अशी बहाय बलेशियम बलाय अदुना ताऊरोई नाय सार दुना ममई बु मयान चिक्तुना कोई न ले अदुगा पाखंग बन फंबाल ओइने अदुगी दमक कंगलागी मेन सुरुंगबु यामन लूब मफम निहाय न लौने कंगलागी मेन सुरुंग मखाबु लैरोनसु नोंगलोनसु तरेत खन्ना फोंग तरेत सेम न फाली हायना साकोक लमलेन दे इदी अरीब मैते लारी थिरेन लयाता थेलोन गी काया थारक बदा नुंगोई भी यावरे भी ओक्षंग लांगसंग मरी मक्न कंगलाबु कोई न ले मसी खंगबु इरम खंग कौवी हाइने ओक्षं कौबदि गुरुगा लैमरेलगा ओग्नरे मधुगी दमक्त ओक्षं कौखी लासु लारे कंगसु कंगले हाइदुना कंगला कौखी नोंगोई बिद था थुई यावरे बिद नुमित थुई कंगलागी नाक्ची द थवान मिचाक निंगथौ सिदबन थोए मधुगी दमक कंगलाबु मयाई सुमदोंग पान लांगोई सरोपुंग कौवे हाइना लैरिक सिदे इदि
0: कंगलागी मरम थारमलीब लाइफम सिंह अमसुंग मरुएब खोंग सिंह असिना कंगला पुनम की मरुनी हाइना उन्ना बहने खुदम ओइना नुंगोई बिदगी नोंगजेंगा फैदेन बिगा अनिबंगना पुमसाई खोंग ल थोखिदना कौरु द तिलुइ कौरु दगे सेंगकोइ नुंगखोंग नुंगलाउबी कुसुम खोंग खोंग अहुम न लैखुन ओइना चटखिदना लंगमाइ सिंह चिंगमा हुत यौखि हाइना थेलोन गी कयात थाबदे यावरी मणिपुर की लमित तुमित चिंग पात तुरेल कया कंगला का मरी लेना हली लाइफसेम लोन की वारी दा सलाई पोलोप की वारी दा गुरु की हक्चांग देगी सलाई तरेत पोखिबा गुरु न सतम लौखिबा सन लाबो थुंगाई दना सलाई तरे न लौखिबा पुनमक अदुबो नुंगी ओइबा वाखल लोंदा श्री कुमलम यायम पंडित ना अशुना हलमी हाइब गुरु की हक्चांग मसग से कंगला कोनुंग असी की मफम असीबुसु गुरु की हक्चांग कयात निहायरी मियोबे की हक्चांग कयात खंगलबदी कंगला कोनुंग की लाइफम खंगबगा माने हायरी अमुकसु गुरु की हक्चांग हाइब से कंगला की कोनुंग अकोयबुनी हायरी
1: लैथक लेखा रोंद हायरी असीब लाई सना मही असीना मालेम चिंग न कोई बगी

0: 덥니 고루기 학상 통과이보다 마린 린툭 생리 어흠먹나 1인 뚜렐 도발 뚜렐 임팔 뚜렐 어흠먹 고이키 하이브는 찡바 찡나 고이바 에코기 마이테 레박 아시기 모음이 하이리 살라이 따릿나 예네 하이리바 고루기 샥담두 살라바니 살라바기 마샥 오이라바디 강라다 코이도 이싱통 오이가니 아두나 신웅통 로우바 닝토우자기 마팜 오이리바니 강라시
1: 라이기 띵겨와 와리 싱다 텀크라가 마우샤겨와 라밋드밋기 마뚱이나 강라시 마니포르기 코농 오이나 타이네기 닝토우시나 까리기 남악다 칼람리바노 하바도 영시 마니포르기 라밋드밋 영로라가디 임파기 강라라이레이바 마팜마시 코농 오이바다 짭짭 마팜마니 코농아마 오이바다 콰이르기 마루 오이바디 닝타울레리바 마팜마도 예그나바나 라이네 요봉암다바 마팜모이게다바니 마두막 오이바 마팜 강라보 코농오이나 칼라미 강라기 농춥다 남불뚜렌 농폭다 임팔뚜렐 아니나 낙드는 레이리 마카롬다 징아 남불마숭 임팔뚜렐 아니 삼나나 마우사기 란반 아마오이나 레라미 아왕다 징마이롱나 팔로오이나 낙드는 레라미 레이리바 피마마싱 아시막 마우사기 란반기 하이네 로바야이 람비 통기 마탕다수 담바키 마야이데 레이바 마람나 강라 마이케이 쿠딩 막대기 락바다 짭짜나 통로바야바 마파마마니 ngasi makki phibam phawbada yenglora basu manipur gi kachin amadegi maruwa ba lambi gi matungi nalak pada panthong phamdi kangla gi sana thong amada hekta thunglogani
0: kangla da phambal tong ki baning thau singi matang da ari ba maite gi khui lairi panthoi bi khongul gi matung innadi pakhang bagi mamang da kha ba salaina kangla da palmi haine idi itihas ki oi ba de gold sing chaitharol kumbaba amasung ningthaurol lambubagi matung innadi pakhangbana ningthauzagi ahanba ningthau oirami pakhangbana khristagi chahi kuntra humdei suba chahidagi ningthau oiduna kanglada panba haurami pakhangba phambal kobalariktugi matung inna pakhangbana mongba nonghum sangi mayai thangba lablen kada masanau lairembi laishanaga phambal tominaki khristagi chahi kuntra humdei dagina ख्रीष्टगी चही लिसंगमग चनिपाल मरफुद्रा माथोई फाउबदा कंगलाद निंगथोरोल कयाना कोनुंग ओइदुना पालमी मरक मरकता साला नमरम ओइदुना मतम मतम दुगी राजनीतिगी फिबमगी मटुंग इन्ना अतै मफम सिंगद कोनुंग ओइखिदबदि नट्टे अदुबु मपुंग ओइना निंगथौ अयामबदि कंगलाद कोनुंग ओइना पालमी कंगलाद फंबाल टोंगबा मैतै निंगथौ सिंगी तंगाई फदब थौरम ओइरमी करीगुंब निंगथौदु फंबाल टोंखिद्रबदि महाकी ममिंग निंगथौरोल लंबुबद चलमदे खुदम मोइना ख्रीष्टगी चही लिसंगमग चहुम मरफुद्रा मरीदगी लिसंगमग चहुम मरफुद्रा मापल फाउबद पालंबा मैडिंगु लारेंबा ख्रीष्टगी लिसंगमग चही चात्रेत निफु निपानदगी लिसंगमग चात्रेत यांकै हुमदै फाउबद पानकिबा चित्साई अमसुंग भरतसाई फंबाल टोंखिदबगी दमक मखोगी वारी अमसुंग ममिंग निंगथौरोल लंबुबद चलमदे निंगथौगी मचा ओइरबसु चोंग फिराल चादबा फिबम मूर्ति काइब ओइरबदि फंबाल काबे यादे
1: कंगलाबु सेमगु सगलम निंगथौ सिंगी मतांगदा चैथारोल कुंबाबदा निंगथौरोल कयागी हक्तकता कंगलाबु सेमगु सगलबगी वाफम तत्नपल्ली कंगलागी फिबम मरोइना लानिंगथौ खागेमबगी हक्तकतगी हेन मोंगताना सेमगु सगली निंगथौसिगी हक्तकता कंगलाबु सेकपलना कोइबा होकी कंगलागी अकोइबा थांगापा खुंजावबगी मतमदा तौकी हाइना कुंबाबदे इरी पाइखोमबगी हक्तकता मी चौंगा सुमना मरीना थाहुम चेक साखी फुरादोलान सानानबगी दबक्ता चराय रोंगबा गरीब बनिवानसिना चिंगबा निंगथौसिनासो कंगलाबु सेमगर सागतबगी थबक कयामुक पाइखलमी अदबो पुनमग अदो आवालांदा ममी फाउबलेतना थुगाई खिरमी
0: गंभीर सिंह महाराज न ख्रीष्टगी चही लिसंगमग चनीपाल कुनमंगादा अवा सिंह माइथी बपीदुना मणिपुर के मनिंग मखा तंबनिंग थौ ओइकी गंभीर सिंह होरी कांचीपुर द ओइन कोनुंग ओइदुनो पालमी गंभीर सिंह होना नोंगा ख्रबदा निंगथेम पिशक चंद्र कीर्तिना निंग थौ ओइरमी अदुबु नरसिंह युवराज नोबिन नथांग न यालो बहाक तगी महारानी कुमुदिनी निंगथेम पिशक कलोइनना मयांग लेबाक चेन खिरमी लैबाग प्रजाना हाइजबदगी नरसिंह ना मणिपुर की निंगथौ ओइरमी नरसिंह महाराज ने ख्रिस्त की चही लिसिंग अमग चनीपाल निफू मरी की सजीबू की तरा मापनी पान बदा कांगलाद कोनुंग ओइना लंगथबांद की होंगत खिरमी आवा लांद माहन ताहलंबा थुगायरंब कयादु नरसिंह महाराज ना अमुक सेंबत की कांगला की युम जाओ नोंहुम संग मोंग संग अमुक सागलमी
1: श्री हरि मंदिर सना संगायरेन सिंबा संग तरामा थोई सारमी गारोट सारमी गोविंद की मांडोप नसिंग बसु सागलमी उत्तरा ममा की नोंसानी दो अमुहन सारमी कांगला की चेकपन लानबन नसिंग बसु शमगर सागलमी नरसिंह महाराज ने नोंगा ख्रबदा चंद्रकृति महाराज ना निंगथौ ओरम मतमदा कांगलाबो हेन निंगथिजना शमगर सागर की ख्रिस्त की सही लिसिंग मग चानीपान हमफूनीपान की अचौब योहराबदा निंखाई की गोविंद की लाइसंग अमुखन्ना चंद्रकृति महाराज ने सागत की गोविंद की बैठोप महाराज की हक तकता शारम बनी
0: कंगला की संगाई साव मतमदा तराई तराई ना हेक्ट सारम दे इराट थौनी अजा पूजा कया परिंग लांगसंग हुंद्रिंगे तौरमी संगाई सानन बगी दमक्त मणिपुर की तोंगान तोंगान बा चिंगी लम सिंह दगी ऊ या लगे सारमी करम करम ब चिंग दगी करम ब ऊ ना जात्रा युम्बी मखुंग सिंह ओगे दगे हाइबन चिंग बा मचा खाय न लेरमी कंगला की संगाई साबा युमसारोन की अकुपनीति कया इलमी
1: लाइबक थी बदी कंगला की फुरा दोलान लाइशंग कया आवामदी साहेब सिंह थुगाय किरमी कैप्टन पेम्बरटन हरमी
0: पिकलब युमथंग नबलेबाग की मणिपुरी सिंहबु बर्मी सिंह ना मखोई नमतम पुंबगी ओई ननम थबा खुदुम चनबा ओई ठोकदर ओई खनबदगी काचिन अमदगी काचिन अमयौना तखायरमी जातियसीबु मरु फंगन मुठटके टेमसिंगलमी फिबम मसिदा कांगलागी फिबम करी ओरमगदगी भान शाबंगमी
1: जेम्स जॉनस्टोन हायरमी
0: चाइना लानफा सिंह ना सारमी हाइबा अचौब चेक अमसुंग नुंग ना साबा नोंसा मना की अचौब ब्लॉक टू बर्मी सिंह ना लेमाई का मानन त्यम खाई की अदुगा मणिपुर की फुरा दला नमसुंग लाइसंग की खुदसा ने न रखबदा निंगम दबग लुइन ना जॉनस्टोन इरमी अशुक फजक्रब फुरा दलान कयाबू थुदे खिबा थुगाई खिबा इखोइना मणिपुर के आर्किटेक्चर नोमुना फजबा फजतबगी मोट पीननबगी हक लेफम ठोकते
1: मशीनताई जॉनस्टोन मसामक अचवो मरालु याजकी ख्रिस्त की सहेली से मग चानी पामर फुद्रा माथोईदा मणिपुर ना ब्रिटिश की मखुत माई थी फंगलब मतुंगदा कंगला की फ्यम दी थमोई गाइनिंगा की मशक ओखी माई पागलब साहेब सिंह ना कंगला की मरु ओइबा नुंगजेंग अपेशक फुमजिन खिरमी वांगोन लारेमगी लाइफम नुंगोबीगी लाइफम आलुप संगलेनगी लाइफम सुरुंग कोनलोय लेमगी लाइफम लाइनिंग थौ पांगन बगी लाइफम पुनमक तेंखाई खिरमी लिसिंग मचानी पान मरफुद्रा तेर की नवंबर थादा कंगला गोविंदगी सना लुपा पुंबा साहेब ने सिदोखी उत्तरा ममांग खिलंबा फुटतरा मापलोम वाव कंगला सानी दो थुगाई खिरमी चेराब गारोट सिदो खिरमी गोविंदगी सरिक अचवा पुंजाये नव कांगसी ओइनरमी
0: निंगथौ रोल कयागी हकतक तगी मैटे चेद यकलंब मेप तगी हौरदुना मैक्सुअल साहेब ना लिसंग मग चनीपाल मरफुद्रा मापल द यकलंब मेप फाउबदा कंगला गी सरुगसी हौजिक लेरिब इम्फाल तुरेल सी कंगला गी मनुंग द चेलमी इम्फाल तुरेल गी नोंगपोक थंग बसरुगसी कंगला गी सरु वेरमी थांग बात न कोशिलमी अदुगी मथंग दा वांगलब लेरंग ताब पलीना अमुक कोशिलमी मधुगी मनुंग दा इसिंग खोंग ना अमुक सुकोशिली खोंग सिंह अदुगी मनुंग थंगबदा चेकपल ना अमुक कोशिली अशुम ना इसिंग ना चेकपल ना पलीना मरोल मरोल कोयरब मतुंग दा कंगला गी मनुंग गी सरुक सिंह अदु लेरमी निंगथौ लेरिब संगाई अदुदी वांगलब थारब लानबन ना पुंग कोई कोशिली कांगजेबुंग कंगला गी मनुंग द लेरमी हाइरिबसी हौजिक की मपाल कांगजेबुंग सिनत्ती किला गी नोंचुप थंगबदा उत्तरा अमसुंग सा अनि दुलेरमी हौजिक ती कोनुंग गी संगाई उत्तरा गी सा अनि उत्तरा अमसुंग अते संगलेन सिंह मथोन लोंगबा सनथोंग अमत्त लेत्रे
1: कैप्टन डन ने इरमी
0: कंगलागी कोनुंगी सरुगसी यज्ञबन लांडारक पतंगाक ठोकनबा खुदसेमगी ओइब कयामरुम सेम सारमी कंगलापात अमसुंग इम्फाल तुरेलगी मनुंगद लई हाइरिबा कंगलाबु कोइरिब लैपल्लदु मतोंद फुट तरा थाई मखोंदन फुट कुन पाई मतोंद फुट मरी मुख पाकपा थाक सिंग लई अदुगा नोंगमई खिल्लग कापनब मफम कयामरुम लई कंगलागी सनथोंग मरी लेरमी मखोई सिंग अदुदी अवांग सनथोंग खा सनथोंग नोंगपोक सनथोंग अमसुंग नोंगचुप सनथोंग
1: सनथोंग मरी सिगी मनुंगदा ख्वाइदी की मरो एबदी नोंगचुप थंग सनथोंग एरमी मदु चेकपल न खारमी नोंगचुप थंग सनथोंग अदो मथोलनि की दोलान अमगुम सारमी सनथोंग असि यामन चाउबा स्ट्रक्चर अमोयरमी हाइब मथोल अनि लोंगबा बेगोदा स्ट्रक्चर असि की मखादा चाउरबा अकोनब थोंगजाउ म फालमी थोंगजाउ दो थोंगना अनि पालमी मदुगी पोरोनजेदो अचव बिम अमन ओरमी सनथोंग अदो मथक थंग मथोल की बेलकोनी सिंदो रेलिंग हाबलमी सनथोंग अदुगी ख्वारी की मतोन थंगबा युमथक अदो कांगी मोंगनी
0: कांगलाद हौजिक हौजिक लेहुरीबा इतिहास की ओइब मोनुमेंट सिंगदी श्री गोविंद की मंदिर बैठोक निंखायरब किला वृंदावन चंद्र की लाइसंग खरसित मंगाइरे श्री गोविंद की मंदिर रसी नरसिंह महाराज न सारंबदु युहाराबद निंखाई खीबदगी चंद्रकीर्ति महाराज न चेतन अमुक सारंबनी लाइसंग से की कयात मयूंग सरुप मंगा ठोक न खाई दो पयाई आहान बदा लाई सिंह दुन लेप लिव फंबाग प्लेटफॉर्म अनि सुबदा पगलांगी सरु अहुम सुबदा मखा थंगब रेलिंगी सरु मरी सुबदा मथक थंगब रेलिंगी सरु मंगा सुबदना दोमगी सरु लाइसंग से ममाई नोंगपोक ओली लाइसंग से की पाक साउबदी मयूंग द मीटर कुंथरा तरेत मखाईनी मराक द मीटर कुंथरा पॉइंट तरेतनी लाइसंगी मनु मधु सरुक अनि थोक न खाई दो पियाई आहान बदा लाई थमली बमाई कई मरी मक खाजन बा कागी सरु अदुगी मथंग दा परिक्रमा चनन बा कोई बलंबी लंबी अदु मीटर मग पॉइंट गुंबुद्रा तरेत पाई लाइसंगी मांगोल अदु मीटर कुनमरी पॉइंट मंगा शांगी मीटर तरेत पाई
1: लाइसंगी हेक नोंगपोक थंगबरा चेक न साबा बैठोब अदुले मसीचो चंद्रकीर्ति महाराज की मतम न सारम बनी बैठोब अदु खाम सुंगवांग दा दोलाननी ले मयाई दा कोन मतुंग दबा चेक की मतुम ताबा युम्भी के आमुक ले हौजिक ती युम्भी मा खोंग तरा माथुए अदु अनिं खायर बा शरुक अमदी नाकल की दलान अनि दुग दंगाई रे बैठोब अशी की पाक जाओबदी मयुंग न मीटर यांखे मरीनी मराग दना मीटर तरा मंगानी
0: हौजिक गिलागी सरुखयाम निंखाय खरे मखा थंग बसरु खरे दुदन तन गिलासगी मवोंगदी स्क्वायर नी बसी फुट कुन मुक वामी बसी की जुठे मरीदा सिफाई संत्री सिगी ले हम लेरमी चेकुल लसीदा नोमई मचिन चिथें दोपम मकुल कया अमले निंग थौ की संगाय बु गिला सिना पुम कोइ कोशिली गिलासगी थोंग जाउ अहुम लेरमी गिलासगी थोंग जाउ अहुम नोंग पोक अमसुंग मखा थंग बथोंग जाउ नोंग चुप थंग बथोंग अदुना उत्रा अमसुंग सा लेबा अदोम द थुलमी मखा थंग बा अदुना गोविंद लेबा अदु गसम नरे हाइमी
1: वृंदावन चंद्र की मंदिर सिदा टिकेट चुबरासना वृंदावन चंद्र लालमी मंदिर से अते मंदिर रगी खेन बयुन सारा सारमी मसी उत्रा की कौब्रो पांगबा कंगला की सुथे कले मथक ता हाई लेवल मोनुमेंट सिंह से मसी राज्य सरकार ना आर्कियोलॉजिकल अमदी एंसेन मोनुमेंट एक की मकादा ngakchen na tham कंगला की लेरी बा इतिहास के मोनुमेंट सिंह से लंदन मसी मपान नाई दबलंदी कंगला की शरुक सिंह से कुपन नई दबदा हौक्रवे इतिहास की संस्कृति वारी के आचों थोड़ा कनी अधिक आतना मैते निंग शोक्षना यंग नवदे की मन थोकना कया आगे मतिक चेक्षना मिकुप ना खुशिंगने बगी हाई बदो खंग बंगाम गने
2: हौजिकता वेरे इतिहास के लमाई दगी कंगला अहान बसरु अईबा डॉक्टर पी गुनिंद्रो खोंजल दा थोक्सोम गोविंद नमदी येंखोम जुगेश्वरी पुथोक पुथ तिंगबांखिबा वाहिंगबम इंद्र कुमार थौरम पुथोकपा ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay kore, nang aduk kia na lai do kaisa kia hai do.
1: Ai ki tukan na mahang do. Advertisement am ta hab kia na ang honda ta na gina la ini.
0: Yam pay kia no do dia. Kari kari no ba nang ki tukan do phangi ka hai sina.
1: Ai ki di variety store ne. Wholesale su, adu retail su adu miya orida.
0: Oh, adu ore di ne. All India re do Imphal da. Kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan babu ngam do ri bro du bo.
0: Kari ki ngam boi do inu hai. Chinkong singa da na ta na. Ahal na ha. Me kum tik na ta ngari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o o mamal di ki a hairak toi jano adu ai di amaga di ta liko
0: is is mamal gi ka su khali ma le
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma da gi hawra ga ne so is pa ya mam su le rami dole
1: o o adu ai ta ra ga di khwai di phaba option si masina oire ni na di khalle
0: to to to to oi doi de masina khwai di phaba
1: umna ma putaram na okchari आकाशवाणी इंफाल की कमर्शियल सेक्शन दा लेंशन बिरउ अदोम की पाउजेल मियोय लाखा कयादा यहन जगे
2: तोंगन तोंगन बथोरम सिंह संदोक्तु ने ताहन जरी वसी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउजिक नुमिदावरम की पुम मंगा तारक पग लुइनना मणिपुरी दमर वे बपाउ ताविरेसी
3: आकाशवाणी इंफाल हौजु फावगी मरु वे बपाउ मुख्यमंत्री युमनांग खेम चालंग से इम्फाल इसकी पोरम पातलई बजेनेंस की प्रोजेक्ट क्या खर संगा खरे खर नहोदोखे अदुगा खरगि नजता हुनखे थोरमदुद मुख्यमंत्री ने कॉन्ट्रैक्ट थबक तौरीबा कर्मचारी सिंगी इरेगुलराइजेशन अमक पलेतब मोंग द तौनब अपील तौखे आईसीआर निनफेट कोलकाता की थौसिल मखाद कृषि विज्ञान केंद्र थवान सिंधुना की केहो मनार की लंगदगी खुच्छा हैबगी पोथोक सिंह पोथोक पहाइबसिदा नमितरा नि चथगदब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अमा नसिदगी केबीके थवाल द होखरे मदुद ककचिंग अमसुंग थवाल जिला दगी खनगलब ट्रेनी कुन्न सरु यारी लमयान बहिजम इराबोट की मपोक थाग मरी लेनना ngachi वांगजिंग होदाम बगी लंबी मताईदा लई अमदि ओही पानब उजारा सिंह थाखरे थौरम मधु लई अमदि उजारा छेमद ममिंग लेरबी वांगजिंग होदाम बदगी माइबम निंगोल मेमन लुसिंखे ककसिंग जिला की नौना पेवर ब्लॉक थादुना छेम बलोरब ककसिंग वाईरी इमोइनु परेंग लंबी ngachi मयांग नंबम रामेश्वर एमएलएना हौनबी मतुंग इना मियामद खुशिनखरे Lambi asi emere local area development phangi makada sembani kendra ki griha amasung cooperation mantri amit shah na ngasi nabi mumbai da pangthok pataruk suba all india official language conference da rising ani kun manga kun taruki rajbharsha gaurab amasung rajbhasha kriti award yentokre nemin ini official language conference asi griha mantralay official language department na sembani G20 energy mantri singi mipham yaw na ba kendra ki power amasung housing and urban affairs mantri manohar lal america da thungre energy marang kaina phangan bahai be hiram da bang thoka da G20 mantri singi mipham asi america na sabapati oiduna ngasi da yimsa kaisa namit phaw bang thoka ne amasung kendra ki power mantale na nepal electricity authority da sahi asi gi december kuntha ma thoi phaw bangarang da gi horaga nomada pungtara nepal electric piba yakre मंत्रालय ने हाई मई मेगावाट चाटुक फाउब मुजफ्फरपुर ढलकेबार लाइन दमसुंग मेगावाट याखई मरीना तनकपुर महेंद्र नगर लाइन की खुतांग पीगनी पाउ लुजरे

0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngai kore, nang adu ke na lai do kai sake hai no.
1: Ai gi dukan ma hang go do. Advertisement am ta hab ke na nang da ta na gi na la ini.
0: Eh, yam phai ke no tu dia. Kari kari no banang gi dukan da phangi ka hai sina.
1: Ai gi di variety store ne. Wholesale su, adu retail su dum yaure da.
0: Oh, adu ore ti ne. Holy dia re do in phal da kok chalu ya dro nang bo.
1: Oh, adu mi loi na mak ta yohan ba bungam do ri bro du bo.
0: Kari gi ngam boi do no hai. Chingkong singa da na ta na. Ahal na ha. Mekum tik na ta ngari ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le ne bani ko hujik tia
1: o mamal di ki a hairak toi ja no ado ai di amaga di ta liko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri changma da gi hono ga ne so is maya mam su le mi dole
1: o ado ai ta ra ga di khwai di ki fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi de masina khwai di ki fa ba
1: umna ma ku taram na okchari Akashvani Imphal ki commercial section da lengshin birau adom gi paujel mioi lakha kaya da yohan jage
2: marai bak maramdam nungsi daba mioi sing irai leiram loi mikhal matam lakpada aina phai ai khoi na heli ngangna sakna ba launa ba ngaktani
3: micham praja ai khoi mayam su leibak sem gadaba afaba thabak taurak kadaba candidate pam nei phangnabra
2: Mizam Praza, Agent Singh Amati, Candidate Singh the Base Toba, Lila Tara Sanduknanabagi, Aiba Singh the Script Kauchari.
3: AIR Code Sok Taba Amadi, Anauba, Awonba Purapayaba Script Singh, Scrutiny Tauzaraga, October Lesingani Kuntaruktagi, Tangna Tangana, Nongmaising Tara Makta, Lila Singh Sandok Jagani.
2: September Kuntra Pawada, Pung Amasanagadaba Script Singh, Akashvani Imphalgi Drama Section the Yohan Birhu.
4: Principal Chief Conservator of Forest Wildlife and Chief Wildlife Warden Government of Manipur Senduna Humputara Nithoi Suba Wildlife Week Celebration Lisingani Kuntaruk Lagliba October Anidagi Nipan Phawba Pangthok Chergani Thauramasigi Manung Channa Essay Writing Painting Amari Quiz Competition Sing Tongan Tongan Ba Category Sing Haibadi Category 1 Da Class 5 Tagi 8 Category 2 Da Class 9 Tagi 12 Phawbagi Oina Pangthok Chergani Loinana State Level Wildlife Protection Incentive Award Lisingani Kuntaruk Wildlife Photography Contest Amati Half Marathon Chingbasu Pangthok Chegani Competition Sing Asigi Tongan Tongan Ba Prize Sing Chuthamjari Saruk Yabining Basingna Telephone Number 9856755482 The Contact Taubiyu Natraga Manak Nakpa Divisional Forest Office Sing Degi Akupamarol Khangdi Bayagani Wildlife Haibati Umang Wamang Da Lady Basanga Sing Asi Yaudana Mioi Ba Aikwene Hing Ba Haibasi Oitok Tabani Maramaduna Lagliba Wildlife Week Celebration Lisingani Kuntaruk Asida, Miam Su, Soidana Sarugabio.
5: Across X, Wahiki Waningai Oidri, Hoki Basahi English Singani Kunitoidagi, Manipur Gilopanda, Sahimari Chupna Sijina Duna Lakuda, My Park Duna Laklaba, Across X Sijinabiu, Pohun Krava, Amadilin Krava Matung, Numit Humpumangani Dagi, Hundrani Sukraba, Wahik Sukta Tadriba, Amadita Krava Lopanda, Hidak Asikap Tokpiu, Hidak Asina, Mui with the Kanaba Piba, Nga, Tintro, Karo in a Singba, Sihande, Across X, Fungfam, AR Agro. Kaisampat Amadi Adong Naknaba Tilhat Hidagon Fam Singh
6: Manipur the Labour Municipality Singh Namasigi Boundary Manung the Labour Property Hybadi Land and Building Kudimaki Property Profile Registration Toduna Property Kudimaki Unique Property Identification Number Upin Pithokchare Upin Asi Pangdriba Property Mapuna Atuba Matamda Isaisagi Municipality the Property Profile Register Tobiduna Property Identification Number Sushoi Shoidana Lobiyu Upin Nasina Adongi Property Adugi Saktaksi Oina Sizin Naragani Atuba Matamda Upin Paibi Naba Kanganjari Municipality Kuding Makta Hokiba Chenba Sahi Lisingani Kunmanga Kuntaruktagi Hoguna Municipality Kuding Maki Manung the Labour Property Singhagi Lopam Topa Property Tax Lobagi Tabak Chataba Hore Property Singhi Mapuna Sahi Gitipam Topa Property Tax Matam Chana Thidok Piduna Adongi Town Bu Owan Bapurak Pada Saruk Yabiu Chahiya Magi Property Tax Asi Sahi Kudingi Junta Paubagi Manung the Tibiduna Matam Chana Thibagi Rebet Pangbagi Kudong Chaba Adusu Lobiu Adongi property tax Sushoi Shoidana, Nashimak Tito Piu, Paujan Jariba, Secretary, Manipur Municipality Property Tax Board.
7: Satazariba Numidang Pungtara, the Gina Taraga Minute Kun Gamapan Pawada, Adongi Damok Tamzari, Tabiningba, Manipuri, Matamishing. थमजरीबा फोन नंबर 9863102016 आकाशवाणी इम्फाल हौजी निमिदांगी पुंग तरेट मखाइ तारे मणिपुरी दा पाउ ताबिरसी
8: आकाशवाणी इम्फाल ngangom kirana pau pajari ahan badamar oiba pau mukhyamantri yumnam khyamchana hairi bjp na manipur da nrc pangthukna ba kendra gi lusingba singda takna duna lakli mukhyamantri yumnam khyamchana ngasi janimsta tongan tongano project kharagina sangakre kharagina urep yungtam kre manipur da seva sankalp abhiyan mai pakna pangthukna ba tongan tongan ba jila singda syam chanari ग्रहमंत्री अमित शाह ने हैरी भारत मखल मखा कया गे लोल सिंह लैबशना लैबक असगे ख्वाइरी के चौब शक्ति ओरी बनी अमशुं केंद्र सरकार ने हैरी भारत लानमिन आकन में सेक्शन थोरंग लखत पदगी जम्मू कश्मीर के फिबम सिंथानिंगाय ओइना फगल लगले बीजेपी मणिपुर प्रदेश ने सिंधुना सोशल मीडिया की मतांग दा वर्कशॉप अमा ngasi बीजेपी स्टेट ऑफिस थंबाल संगले ने फंग थोकरे वर्कशॉप सिदा बीजेपी की मोर्चा डिस्ट्रिक्ट मसुंग मंडल सिंगी सोशल मीडिया टीम सिंह सर्व किया की वर्कशॉप दुदा मुख्यमंत्री यमुना खेमसा नहाई एनआरसी की वापम मसी बीजेपी की मिखल की मैनिफेस्टो द याउर बने मसुंग दोल असिना हानद की हौना एनआरसी की दाबी तौदुन लाख बने मसी की मथकता मणिपुरी जाति बु कंजन बगीदमक आईएलपी राज्य सिदा चनहन की बदु बीजेपी सरकार ननी मणिपुर खुंदा मिनरी बकांगनु फुरुप खुदिमक अमतो इन हिमिन नगदबनी हाइबकी वाखल लोंदा बीजेपी ना ngasi फाव बहो नदुनो लाखली बीजेपी ना तौबा फव थबक मयाम अमा इं कुमजाले सिंगनी कुलहुम दोयगी मेदगी थोरखिबे इरांग ना नमत खिदुना मियाम द खंगन मंगमद्रे मरमदुना दोलगी सोशल मीडिया सी हेन एक्टिवेट तो वो चंग ही महक नहाई
9: तो इमेजिन तो तभी कुछ और नर्वस कहाँ क्या एक वही थोड़ा मंदन कर रहे हैं एक वही तो टाइम नवाई वसीम वसीम वाव उसानी प्रजाति वाकल लोनी मतलब ये है चुया हुए अरु राम हाथ सुबह प्रजेंट जी माम से भी तो आप तो आप कम्युनिटी के आप वही सारकां दा मुझे आवाना के आप भूमि नगर लाइन उकुल सली सेनापति सली कांगो बिशप की सुन प्रोग्राम ने हाय वसीम से तो आप तो आप कम्युनिटी को फाग तरफ तारी वसी वाकल सब मानर कांदा मुझे कुछ पुन्न करने तो वही
8: थोरमर द दोलगे स्टेट प्रेसिडेंट अमसुंग राज्यसभा एमपी ए सरदा देविन हाय सरकार असिना मियाम गे याइफन बगिदमक लोकलीबा थबक थोरम सिंह मियाम द खंगन बा खर वाटन उरे मरमदुना दोलगे सोशल मीडिया टीम सिंह ना सरकार गे थबक थोरम सिंह असि खंगन बगिदमक हेन एक्टिवेट ओइब तंगाई फदे महाक नहाय
10: मसीदा ऐन अपील सब्सिडी के प्रोजेक्ट कार्यकर्ता सिंह सोशल मीडिया प्रोफेशनली बाय दी मसीदा ऐन हाइजेनिक प्रोजेक्ट ऐ कोई सरकार मा ताई का पॉलिटिकल पार्टी अदना सरकार सिन पाइकल स्टेट कुदि मा अदु मा मणिपुर स्टेट की कानदा मणिपुर स्टेट की प्रजा की वेलफेयर की पाइकल ऐ का तो कुदि का सिन से अपना सोशल मीडिया की चूदा मणिपुर से उसके मध्य डेवलप तो हुआ ह्यूमैनिटी की रिलेटेड कोई बात अतु बगाम है ना ले आए सब इसे फोकस तो हुए
8: हौदोपगी थोरमदा एमएलए थोनौजुम बसंत कुमार मसुंग दोलगी मकोक थोंगबा लुसिंगब कया सरुक याकी मुख्यमंत्री यमनाम ख्यामचानंगा से इम्फाल इसकी परम पतलाइब जनिमस्ता टोंगान टोंगान ब प्रोजेक्ट खरेगिना संगाखरे खरेगिना पुरे पुयुंग तमखरे थोरमद द वांगांग ब द मुख्यमंत्री नहाय कॉन्ट्रैक्ट द थबक तोरीब कर्मचारी सिंगी रेगुलराइजेशन अमक पलाइतब मोंग द तोंगना बहनगानी मरमदुना सेल पिजे दुनवानों बगी वाखल लों था दुक्तुना मसा मसा की मतोग दो पूनिंग चंगना थबक तो गुदा बनी महाग नहाई कोविड 19 की मतम्दा डॉक्टर अमदी नर्सिंग ना लव की वा थोदांग सिंग थोईदोक ना थागत निंगाई नी थमोय शंग ना मतोग निंग थी ना तौरीब कर्मचारी सिंग मरी लेना बा याई पर थोरांग सिंग पैकेट पदा सरकार ना मखोय की तोपम थोकप सिंग सोई देना थबक तो ओन थोकानी मुख्यमंत्री नहाई
11: कोविड थेनगी बा कोविड वारियर नोइना पैसा खाइना रगा केनोता ओइना नोइना खाय हाइबन तेगो कम टू टू न्यूज़पेपर रेगुलर तागेदी पैसा खाइना बि कांसेप्ट तो लोथो बुसिनी लेट्स कम स्ट्रेट आइको यु वारे इ सिनी सिनी न भजना हाय वा को हेक लासु सेन खाइना रगा पिनिंग बगे मोंग दो वा हे गांगे पाकुम बि द लेबो को थमोय सेंग द थबक तौरि बंगा तनी मखा ताना सु तौदुइनी अवार्ड पास स्टाफ सु हाबसी या नान बदा ममांग थादन चेलु बा नखोय गी याम न क्लियरस्ट के नमा लई हाइब पोतु उडलो अदुगा लोइनमक सरकार न मतेंग बांगनी है
8: ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯪ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 19 ꯆꯪꯕ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁ ꯖꯤꯝ, ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 90 ꯆꯪꯕ ꯑꯣꯇꯣ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯃꯦꯁꯤꯟ, ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 4 ꯔꯣꯝ ꯆꯪꯕ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ R90 ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯟꯗ ꯐ꯭ꯌꯨꯔꯣꯂꯣꯁꯀꯣꯄꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯎꯔꯦꯞ ꯌꯨꯝ ꯇꯝꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯁꯤꯡ ꯊꯥꯀꯨꯔ, ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯁꯨꯃꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯣꯃꯔꯖꯤꯠ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯗꯤꯕꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ CBCRO ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯗ CBCRO ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯣꯡ ꯑꯦꯟ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯇ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯍꯤꯟꯗꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯩꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯁꯅꯥ ꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯥꯇꯦꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ꯫
12: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯤꯅꯦꯛ ꯃꯁꯤꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ IGRT IMRT ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯥꯔꯛ SRS SRT SBRT ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯔꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗ VMED-ꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯃꯩ ꯌꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩ ꯌꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ꯫ CMHT PMJAY ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯃꯔ ꯕꯣꯔꯗ ꯐꯝꯗꯨꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯂꯤ꯫ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ NABH ꯐꯪꯂꯕ AOI ꯕꯕꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ, ꯁꯖꯤꯕꯥ ꯖꯦꯜ ꯔꯣꯗ, ꯈꯥꯕꯩꯁꯣꯏ, ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫
8: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 17ꯇꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 17 ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯨꯝꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯅꯨꯅꯦ ꯑꯥꯅꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯦꯟꯖꯦꯂꯤꯟ ꯔꯦꯅꯤꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯁꯪꯀꯜꯞ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯄꯨꯖꯥ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯄꯦꯕꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ MLA ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ MLA ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ꯫
13: ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯏꯔꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯕꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯊꯥꯗꯨꯅ MLA ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯕꯕꯨꯗꯤ ꯀꯨꯏꯔꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅꯨ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯏꯅꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯁꯤꯟꯅꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯨꯝ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯨꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯄꯤꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯌꯥꯅꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ꯫
8: ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯏꯁꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯇꯤꯐꯥꯏꯃꯨꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 12 ꯔꯣꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯈꯦꯗꯥꯒꯔ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃ, ꯆꯥꯛꯈꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯇꯨꯝꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आकाशवाणी इम्फाल हौसी निमितांगी पुमा पलतारे मणिपुरी दपाओ ताबिरसी।
5: आकाशवाणी इम्फाल गांगोम किरण पाओ पाजरी। मुख्यमंत्री युमनाम ख्यामसा सभापति होगी इम्फा सेक्रेटरीट तोान तोब राजनीति दल मिफम पांतोक्रे मिफम NRC अपडेट तब यौना मरी लेने वाफम क्या खन नेनकी। अमरोंदा NHIDCL रीजनल ऑफिस

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार में अर्पणा आप सभी का स्वागत करती है। वक्त हो गया है 10:31 और 5 सेकंड। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे, यही कामना एफएम गोल्ड हमेशा करता है। तो चलिए आज का हर श्रृंगार शुरू करते हैं अनाड़ी फिल्म के गीत के साथ। आवाज है साधना सरगम और उदित नारायण की। एक बार फिर से आपको बता दें, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये, और घड़ी में वक्त है 10:31 और 40 सेकंड।

ये तो सच है कि क्या मौसम आया है, कभी रिमझिम फुहार है तो इतनी तेज कभी धूप निकल आती है दिन में कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन एक बात तो है कि जब मोहब्बत हो जाती है तो दिल कहना तो बहुत कुछ चाहता है, और ये रिमझिम फुहार हमारे दिल को बड़ा सुकून देती है। लेकिन क्या होता है ना कि उम्र भर के लिए ऐसा होता है कि कभी कोई हमारा होना नहीं चाहता, और ये भी है कि वो आसानी से हमें खोना भी नहीं चाहता। बात होती है सिर्फ लफ्ज़ों की, ये लफ्ज़ मिलते ही नहीं हैं। कभी हम मोहब्बत बताना भी चाहते हैं और कभी इसी मोहब्बत को छुपाना भी चाहते हैं।

0: विनोद राठौर की आवाज में आपने बाजीगर फिल्म से ये गीत सुना और आपने ट्यून इन किया हुआ है
1: कैसे चुनें सही बीज कैसे करें फसलों की उचित देखभाल कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह वो भी लाइव सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

फिल्म का नाम है बहार आने तक और आवाज थी पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की। ये तो होता है दोस्तों कि मोहब्बत इनायत और करम हम देखते हैं जब सामने वाले का चेहरा हम देखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि उसे मना लें क्योंकि वो रूठ गया है, लेकिन असल में होता क्या है, वो रूठा नहीं होता, वो बदल गया होता है। अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में अगला गीत होगा, फिल्म का नाम है क्रिमिनल।

नाराज तो बिल्कुल मत करना, खास करके उसे जो आपसे बेहद प्यार करता है। बना लो उसे अपना जो तुम्हें दिल से चाहता हो। कसम से ये चाहने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। 10:55 और 35 सेकंड हो चुके हैं। अगला गीत होगा साहिब फिल्म से बप्पी लहरी और एस जानकी की आवाज में। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत, संग रहूंगी आपके मैं अर्पणा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे

0: अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही,
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said the party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies. Mr. Modi said the people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double engine government. This will not only propel the state to new heights of progress, but also strengthen the government's resolve to bring prosperity to the lives of every individual, he added. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah has said that Chhatrapati Shivaji Maharaj made Swaraj, Swadharma and Swabhasha, self-rule, one's faith and one's own language, the fundamental elements of Swaraj. Addressing Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today, the Union Home Minister highlighted Maharashtra's rich linguistic and cultural heritage. He said, Shivaji Maharaj gave Marathi prominence in administration and created a strong repository of terminology in the language, which became an important foundation of governance during the era of Hindavi Swaraj. Greeting people on Hindi Divas and Ganesh Chaturthi, Mr. Shah described their celebration on the same day as a Manikanchan Yog, an auspicious coincidence. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayaka Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi today attended the Ganesh Chaturthi celebration at the residence of Union Minister Piyush Goyal in New Delhi. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Monday, we'll be taking calls on market-related queries. But do remember, we do not address stock or company-specific queries. To connect with us, you can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Manoj Pathak and myself, Sarabjit Kaur.
1: Namaskar, Market Mantra ki tazank mein swagat hai. हर सोमवार की तरह आज हम आपके प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने वाले हैं. ये जानकारी आपको हुआ ही करती है. हम बस आपको अपना नंबर बताते हैं, 2331-4444, 2331-0481, या फिर 2371-7106. दिल्ली से बाहर से यदि आप फोन करते हैं या मोबाइल फोन से करते हैं तो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी आपको डायल करना होगा. हम इस कार्यक्रम में किसी खास कंपनी या शेयर से संबंधित प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा. अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: नमस्कार, पूरे आकाशवाणी परिवार को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से.

0: Country's retail inflation rises to 4.8% in August this year. Wholesale inflation stands at 9.92%. In Asian markets, South Korea's KOSPI declines over 3%. And global crude oil prices surge, Brent crude trading over $108 per barrel.
1: देश में इस वर्ष अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 4.82% पर पहुंची। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 9.92% दर्ज हुई। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3% से अधिक लुढ़का और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $108 प्रति बैरल से ऊपर पहुंचा।

0: And before we go any further in the program, may we remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Meanwhile, let's begin with the leading story of the day. Country's retail inflation accelerated to 4.82% in August on an annual basis, remaining above the Reserve Bank of India's target of 4% for the third consecutive month this year. The August inflation reading was higher than the 4.45% recorded in July as food prices remained elevated. According to data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas increased to 5.23%, while in urban regions it rose to 4.31%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.95% last month, up from 5.52% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation during the last month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food, beverages and intoxicants. Shishir, we'd like to have your expert comment on this data regarding the retail inflation acceleration to 4.8% in August.
1: See, if you see the last line which you just mentioned, that the reasons for rise in that, and one of the reasons is the personal care thing. And for the listeners, it is important to note that when we talk about personal care, it includes gold and silver. So the precious metal prices are on the rise or on the higher. I would not say it's again rising at a pace which we have seen during last 2 to 3 months, but it's still at a very high. And among the precious metals, silver is very high. So this is number one reason why we have seen 4.8%, 4.9% of inflation. And now the expectation is that when the next month Monetary Policy Committee meeting will take place, there could be some decision on the policy interest rate, which have been kept on hold for some time. But this time, as we are seeing that it has increased 4%, and the expectation, inflationary expectation, is also very high. So in a very technical term, I would say that when you have to mop up that durable liquidity from the market, the best way is to increase the policy interest rate, and that is what we are expecting in the next month policy meeting.
2: हमारे साथ फोन लाइन पर कई श्रोता जुड़ चुके हैं, विशेष रूप से दिल्ली से अमित झा. हम आग्रह करेंगे कुछ पल हमारे साथ बने रहिए. हम आपको पहले मुद्रास्फीति से ही संबंधित एक खबर और देते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे. आपके धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए पहले से ही आभार. देश में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त में मामूली रूप से बढ़ी, 9.92% हो गई. जुलाई में ये 9.78% थी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने वार्षिक मुद्रास्फीति खनिज तेल, खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, मूल धातुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, रसायनों और रासायनिक उत्पादों के मूल्य बढ़ने से प्रेरित रही है, जिसके चलते ये वृद्धि हुई है. थोक मूल्य सूचकांक में प्रमुख श्रेणियों में ईंधन और बिजली समूह की मुद्रास्फीति पिछले महीने 22.9% रही. जुलाई में ये 20% थी. विनिर्मित उत्पाद की मुद्रास्फीति 8.3% से बढ़कर लगभग 8.4% हो गई. इस बीच प्राथमिक वर्ग की वस्तुओं की मुद्रास्फीति अगस्त में घटी है, 7.8% पर आ गई. जुलाई में ये 8.5% थी. WPI अगस्त में बढ़कर 7.05% पर पहुंच गया, जबकि इसके पिछले महीने ये 6.65% था. अगस्त में आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में वार्षिक आधार पर 9.81% की वृद्धि हुई है. ये थे आंकड़े थोक मूल्य मुद्रास्फीति से संबंधित. और आप दिल्ली से अमित जी. अमित जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए.
3: सर नमस्कार, मैं दिल्ली से अमित जी बात कर रहा हूँ. सर
2: जी स्वागत है आपका.
3: सीना सर जी नमस्कार. सर हेलो.
1: नमस्कार नमस्कार.
3: सर मेरा प्रश्न ये है कि हाल ही दिनों में कल ब्रिक्स सम्मेलन हमारे यहाँ समाप्त हुई सर, तो ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा हुई है, तो क्या ब्रिक्स करेंसी चलन में आ जाएगी, और चलन में अगर आएगी तो कब तक आएगी, इसमें क्या मुश्किल आ सकती है. दूसरी चीज सर कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होती है सर, वो भी अपने प्रोजेक्शन देती है GDP के बारे में, इंडिया के बारे में, विश्व बैंक भी देती है, हमारे RBI भी मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान देती है. तो इस बार जो जीडीपी का आंकड़ा आया सर, तो वो सबको मतलब सरप्राइज कर दिया एक तरह से, तो क्या उनके कैलकुलेशन में कहीं कमी रह गई थी क्या सर? धन्यवाद।
1: देखिए पहला जो प्रश्न है ब्रिक्स करेंसी का, ये स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक में इस पर कोई प्रस्ताव नहीं था, कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ये काफी समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बैठक में जिस तरीके से हमारा यूरोपियन यूनियन का एक करेंसी यूरो है वो ब्रिक्स करेंसी लाएंगे, उसकी जगह पर ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम की जरूर बात हुई है, यानी कि दो देशों के बीच भुगतान की व्यवस्था और सरल और सहज हो सके उसके लिए बात जरूर हुई है, ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा नहीं हुई है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो हमारे आर्थिक विकास के आंकड़े हैं जो कि जीडीपी के नंबर से करते हैं, और आपने कहा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है या फिर रिजर्व बैंक है, इन सभी के मानों से थोड़ा ज्यादा आया है पहली तिमाही में, अप्रैल जून की तिमाही में। देखिए आपको केवल हेडलाइन नहीं देखना चाहिए, हेडलाइन के पीछे के आंकड़े भी देखना चाहिए, और हम लोग क्या करते हैं कि उसके पीछे जो प्रमुख आर्थिक संकेतक जिसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, जैसे जीएसटी का कलेक्शन क्या रहा, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन क्या रहा, आपका ई वे बिल जनरेशन जो जीएसटी में आता उसका क्या रहा, यदि वो सभी आंकड़े आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो जीडीपी के आंकड़े में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसको लेकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम हेडलाइन तो देखते हैं, हेडलाइन के पीछे की कहानियों को अगर आप देखेंगे तो शायद इन आंकड़ों की प्रासंगिकता जो है वो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी।
0: इंटरेस्टिंगली आवर नेक्स्ट कॉलर इज आल्सो फ्रॉम दिल्ली। विनय जी सवाल पूछें।
4: मार्केट
2: मंत्री से पूछिए।
4: नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है टैक्स आफ्टर टैक्स, दूसरी कंपनी जो डिविडेंड देती है और तो वो डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स को मिलता है तो शेयर होल्डर्स को दोबारा उस डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। पहले कंपनी ऑलरेडी जब टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स दे चुकी होती है और फिर एज ए शेयर होल्डर में फिर देना पड़ता है, फिर डबल टैक्सेशन क्यों होता है, ये पूछना पड़ता है।
1: देखिए आपने जो मुद्दा उठाया है कि कंपनी जो भी लाभ कमाती है निश्चित तौर पर उस पे जो लाभ होता है, दरअसल दो तरीके का लाभ होता है, एक आपका परिचालन लाभ जिसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और उसके बाद उसमें जो टैक्स आता है उसको माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाता है, उसको घटा दे तो हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में से एक हिस्सा आपको लाभांश के तौर पर दिया जाता है, वो आपकी अपनी आय है, वो आपको जब एक शेयर धारक होने के नाते मिलता है आपकी आय में जुड़ जाता है और उसमें आपको कर देना पड़ता है। तो डबल टैक्सेशन आप कह सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें टैक्स पे प्रॉफिट मार्क किया जा चुका है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो आय आपके पास किस स्वरूप में आई है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है और उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। और ये भी ध्यान में रखिए कि अगर आपने जो है अगर आप करके योग्य जिसको कहते हैं आमदनी में नहीं है तो आप उसका फायदा भी ले सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स लेना वो एक शेयर धारक की आय है और कंपनी के मुनाफे पर कर लगना वो कंपनी की आय है।
2: दिल्ली से ही हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जयकिशन। जयकिशन जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
5: जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ इसलिए कि कल का सम्मेलन खत्म हुआ है।
2: जी जी।
5: अब अभी आपने जो ये करेंसी की बात करी है, मैंने 15 साल पहले से मेहनत की कि भाई हमारे देश में प्लास्टिक करेंसी आनी चाहिए, जो कि अब 10 और 20 का नोट जो है वो अगले साल या कुछ बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगा, तो क्या इससे हमारी कुछ स्थिति आर्थिक स्थिति सुधरेगी हमारे यहाँ या नहीं सुधरेगी? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कहना है कि भाई हम लोगों को उस गेम के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए जो हमारी स्थिति को खराब करते हैं, और डुप्लीकेट करेंसी आज भी छप रही है और छपते चले आ रही है। भाई ये मेरे दो क्वेश्चन है।
1: जो आपका पहला प्रश्न है, देखिए मुझे लगता है कि दो अलग अलग मुद्दे हैं। ब्रिक्स करेंसी जो है वो एक जो अलग अलग देश हैं हमारे उन सभी के बीच में एक सामान्य समान मुद्रा यानी कि कॉमन करेंसी की बात की जा रही, जैसा कि हमारा ईयू में यूरोपियन संघ में जो हमारा यूरो है। तो एक बात यह स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक में ब्रिक्स करेंसी पे चर्चा नहीं हुई है फिलहाल, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरा आपने जो मुद्दा उठाया कि प्लास्टिक करेंसी का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी रिजर्व बैंक के तहत आने वाले प्रिंटिंग प्रेस ने जो है वो उन्होंने टेंडर जारी किया है प्लास्टिक शीट के लिए, जिसके आधार पर 10 रुपए और 20 रुपए के नोट जो हैं वो जारी किए जाने हैं प्लास्टिक करेंसी के तौर पे, और इससे आर्थिक स्थिति के जोड़ा जाना कोई सही नहीं होगा। इससे ये होगा कि रिजर्व बैंक की जो लागत होती है हर साल जो नोट छापते हैं जिस पर करीबन 4,500 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की लागत आती है, उस लागत में जरूर कुछ कमी आ सकती है क्योंकि प्लास्टिक के जो नोट होते हैं, प्लास्टिक जो पॉलीमर सीड्स के नोट होते हैं उसकी जिंदगी ज्यादा होती है। जो कागजी नोट होते हैं ये 3 वर्ष तक चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी बात यह भी है कि हमारे देश में जो एक कागजी नोट को रखने का जो तौर तरीका है वो काफी अलग है, उससे भी जो नोट की जिंदगी है उसके ऊपर असर पड़ता है। तो प्लास्टिक करेंसी से रिजर्व बैंक की लागत में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था पे आर्थिक स्थिति पे उसका कोई असर पड़ेगा ये कहना अभी सही नहीं होगा।
0: शिशिर, आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन अगेन टू द न्यूज ऑफ WPI इन्फ्लेशन राइजिंग टू 9.92% इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो व्हाट डज दिस इंक्रीज टेल अस अबाउट द करंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द Indian economy?
1: See, we have 2 inflation rates. One is called retail inflation based on consumer price index, and the second one is called wholesale inflation, which is based on the wholesale price index. Since 2016, we are using CPI for all the policy discussion. So that is why whenever you see discussion on inflation, you will find more focus on the retail inflation and not on the wholesale inflation. But wholesale inflation also has some significance. When we say 9.9% of wholesale inflation, that means the producers are paying more for producing goods. So when the producers are paying more for the input, at the end of day, they will also pass it on to the consumer, that the retail consumer.
0: Called the cascading effect.
1: Of course, cascading effect. But that cascading effect has a time lag. It is not going to happen that today you have, say, 9.9% of wholesale inflation and next month your retail inflation will be something around 8%. It will take some time, but it is giving an indication that the producers are paying higher cost for the input and the retail consumer may have to pay more in the future.
0: All right, let's hear from our next caller from Bhopal. Shankar ji, sawal poochhe.
6: Namaste, Shishir Sinha ji. Aapko Ganpati Utsav ki shubhkamnaye.
1: Namaskar, dhanyawad.
6: Makar Santrati team sabko shubhkamnaye. Mera sawal sir, ye BRICS ke upar hi hai. BRICS as a group banaya hai jisme bade ajeebo gareeb type ke log hain. Ek manufacturer hai, bahut bada strong. Dusra ek consumer hai, India. तीसरा साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है. इनकी लिवरेज कहाँ है? हाउ डिल दे विल बी वेल टू लिवरेज? तो इस ब्रिक्स का लिवरेज क्या है? व्हाट इज द लिवरेज दैट ब्रिक्स कैन हैव टू काउंटर द यूनिलैटरल एक्शंस बाय अमेरिका और यू और एनी दीस कंट्रीज सो दैट दिस कैन बी स्टॉप्ड और वॉर कैन.
1: शंकर जी देखिए, आप अगर ब्रिक्स के तमाम देशों के जीडीपी को मिला लीजिए और उनका अगर आप देखिए कि 30% 40% की जीडीपी की बात आती है, उससे ज्यादा की जीडीपी की बात आती है, वो दुनिया के बाजार में नीति निर्माण में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ब्रिक्स में एक चर्चा हुई है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज की। अब आप कहेंगे ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? अब आप यही समझिए कि दुनिया भर में जितने भी अनाज की बात करें, जो कृषि उत्पाद हैं, उसका लगभग 44% जो है वो ब्रिक्स देशों में है। अभी क्या होता है कि ये जितने भी हमारी कमोडिटीज हैं उसकी प्राइसेस शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के जरिए, CBT जिसको हम लोग कहते हैं, उसके जरिए तय होती है। अब यदि हमारे पास एक ऐसा एक्सचेंज हो जहां पर 44% जो खपत हो रहा है उसके लिए कीमत जो कहते हैं कि डिस्कवर करना, यानी कि उसका कीमत का पता करना वो संभव हो पाए, ये एक लिवरेज पॉइंट है। अब दूसरी चीज आप ये भी देखें कि एक तरफ आपके पास चाइना है जिनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल काफी हाई है, एक रशिया है जिनके पास कई तरह के नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हाई में है। जब इस तरह के देश एक मंच पे आते हैं तो वो ग्लोबल साउथ के लिए भी, यानी कि जो हमारे अल्प विकसित देश हैं, अविकसित देश हैं, उनके लिए भी कुछ बड़ा कदम उठाने की बात करते हैं, जो कि इस बैठक में हुई है। ये वो लिवरेज है। तो आप एक तरफ ये भी देखिए कि बाजार की दशा दिशा को वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं, दूसरा ये देखिए कि बाजार में कीमत तय करने की व्यवस्था को वो कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और तीसरा

0: जो हमारे अल्प विकसित देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो ये वो मुद्दे हैं जो ब्रिक्स में लेवरेज, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसके जरिए संभव हो सकता है।
1: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नए ढांचे का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत बैंक पूरे खाते के बजाय केवल विवादित लेन देन राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर देंगे, जब 1,000 रुपए या इससे अधिक के असामान्य हस्तांतरण को म्यूल खातों या साइबर धोखाधड़ी से संभावित रूप से जोड़ा जाता है। बैंकों को हस्तांतरण की पहचान करने के लिए AI आधारित लेन देन निगरानी प्रणाली का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जो ग्राहक की घोषित प्रोफाइल के लिए अकस्मात है, अनुपयुक्त है या ज्ञात साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मसौदा निर्देश 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होने वाले हैं, हालांकि बैंक उन्हें पहले भी लागू कर सकते हैं। RBI के अनुसार ये ढांचा 4 अगस्त 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करता है, जिसमें इसे मनी म्यूल गतिविधि और साइबर सक्षम धोखाधड़ी से जुड़ी राशियों या खातों पर अस्थायी डेबिट होल्ड के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP निर्धारित करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। संदिग्ध मनी म्यूल खातों के लिए RBI के प्रस्तावित नियम अधिक लक्षित दृष्टिकोण के साथ पूरे खाते को फ्रीज करने के कठोर दृष्टिकोण को बदल देंगे। 2 अक्टूबर 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए गए मसौदा संशोधन निर्देश KYC निर्देश 2025 के तहत बैंक खाता संचालन और मनी म्यूल पर मौजूदा निर्देशों में संशोधन करते हैं।
2: मीनवाइल जगदीश जोशी जी जॉइन्स अस फ्रॉम दिल्ली। जगदीश जी अपना सवाल पूछें।
3: हाँ जी मैम को नमस्कार, जगदीश जोशी नांगली दिल्ली से
2: जी,
3: और एक्सपर्ट जो बैठे इनको भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
3: हाँ सर, दो छोटे से क्वेश्चन है सामान्य से कि एक तो ये कि ये सुनने में मैंने सुना है कि हालांकि इसमें कितनी सत्यता है या आपकी एक्सपर्ट जो एडवाइस है वो चलेगी कि गोल्ड का जो स्टॉक है इंडिया के पास फिलहाल है नहीं, और दूसरा जो प्लास्टिक करेंसी की बात हो रही है तो एक तरफ तो ये भी बात आती है कि प्लास्टिक से एनवायरमेंट जो हमारा पर्यावरण है इसको भी लॉस होता है, तो इससे तो इन दोनों पे आपके एक्सपर्ट राय चाहता हूँ। थैंक यू
0: जगदीश जी। मुझे लगता है जो पहला आपका प्रश्न है, जो आपने एक आशंका जताई है सोने को लेकर के, ये निराधार है। अटकलें जो भी चलती हों, देखिए सोने के मामले में दो चीजों का ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि विश्व में सोने की आपूर्ति सीमित है, ऐसा नहीं है कि सोना नए सिरे से बन रहा है, तो जितना हम सोना खपत कर रहे हैं वो आपूर्ति सीमित होती जा रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे देश में वो सोने की जो खपत है, सोने का जो भंडार है वो कम हुआ है। दूसरा, देश में अगर सोने की भंडार की बात करें तो एक रिजर्व बैंक के पास है और एक जो कि घरों में है। अब घरों में सोने की कितना सोना है ये किसी को नहीं पता है। कभी लोग कहते हैं कोई 22,000 टन है, कोई कहते हैं 20,000 टन है, ये आ जाएगा तो बाजार में सोने की कीमत बिल्कुल गिर जाएगी, लेकिन उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि कोई ऐसा बताता नहीं कि मेरे पास कितना सोना है। आपके हमारे घर में जो भी सोना होता है, रिजर्व बैंक के पास जो सोना है वो हर सप्ताह उसके आंकड़े जारी किए जाते हैं, और अगर आपने देखा होगा कि बीते सप्ताह जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है उसमें सोने का एक बड़ा योगदान है। तो पहली बात, ये सोने की भंडार नहीं है, इस खबर का कोई आधार बनता नहीं है। आपने जहां से भी सुना होगा उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। दूसरा आपका प्रश्न प्लास्टिक करेंसी को लेकर के, देखिए प्लास्टिक करेंसी और कागजी मुद्रा जो है, अब कागजी मुद्रा जो है, आप कागज जो बनाते हैं वो कागज कहां से आता है, या तो आप पेड़ काटते हैं या जो आपके पास है उसको रिसाइकल करते हैं, तो रिसाइकलिंग से कागज नया बन जाएगा उसमें दिक्कत होगी क्योंकि उसमें सुरक्षा के कई तथ्य जो होते हैं वो शायद ना रह पाए, इसीलिए आपको नए कागज की जरूरत पड़ेगी। तो कागज आपको ज्यादा चाहिए, उसके लिए आपको अलग संसाधन देखने पड़ेंगे। प्लास्टिक करेंसी की जिंदगी ज्यादा होती है, जैसा मैंने पहले कहा था कि कागजी नोट की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 वर्ष तक होती है, प्लास्टिक के लिए कोई ऐसा नहीं है, और दुनिया के तमाम देशों में प्लास्टिक करेंसी जो है वो चलन में है।
1: दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिनेश कुमार, स्वागत आपका दिनेश जी, सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
1: स्वागत।
4: मेरा सवाल भी प्लास्टिक करेंसी पर है
1: जी।
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी ये प्रपोजल है कि प्लास्टिक करेंसी 10 या 20 रुपए में इंट्रोड्यूस होगी, तो इन डिनोमिनेशन में तो ऑलरेडी सिक्के चल रहे हैं, तो ये डुअलिटी क्यों है, बल्कि प्लास्टिक करेंसी क्या उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए थी, जैसे 100 या 500 जिसमें जिसमें ऑलरेडी सिक्के नहीं है, क्योंकि सिक्के भी काफी लंबी लाइफ होती है। थैंक यू वेरी मच
0: जी। दिनेश जी आप बिल्कुल, आपकी राय बहुत अच्छी राय है कि हमें जो ऊंची मुद्रा ऊंची कीमत वाले हैं 100 रुपए 200 रुपए या 500 रुपए वाले वहां पे प्लास्टिक करेंसी की बात है ये ध्यान रखिए कि अभी जो 10 रुपए और 20 रुपए के जो प्लास्टिक करेंसी लाए जा रहे हैं वो प्रायोगिक तौर पे लाए जा रहे हैं वो पायलट स्कीम के तहत है उसकी उपयोगिता किस तरीके से होगी उसके चलन में किस तरीके की बात आएगी उसके लिए वो लाया गया है हो सकता है आप 2 साल के बाद ऊंची कीमत वाले जो नोट हैं उनमें आप प्लास्टिक करेंसी देखेंगे
2: Well, in some more news, India and Mercosur have signed the first additional protocol to the India-Mercosur Preferential Trade Agreement, PTA, marking an important step towards facilitating paperless trade and modernizing customs procedures between India and the Mercosur countries. Mercosur is a South American economic and political trade bloc founded in 1991. Its states' parties include Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Bolivia. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the 5th edition of Semicon India 2026 at Yashobhoomi, New Delhi on Wednesday. It will bring together over 600 exhibitors, 300 international companies and delegations from more than 40 countries.
1: और अब खबरें शेयर बाजार से घरेलू शेयर बाजार तो श्रोताओं बंद है आपकी कई बधाइयां और हमारी ओर से आपको कई बधाइयां गणेश चतुर्थी के अवसर पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगहों पर इक्विटी इक्विटी डेरिवेटिव और सिक्योरिटीज का लेन देन त्यौहार के उपलक्ष में आज बंद रहा सराफा बाजार और मुद्रा बाजार भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर बंद है पिछले कारोबारी सप्ताह में शेयर बाजार अच्छे खासे घाटे के साथ बंद हुआ था और गौरतलब है कि लगातार 5 सप्ताह से बाजार गिरावट के साथ बंद हो रहा है बाजार में इस लगातार गिरावट का यह दौर क्या दर्शा रहा हमारे व्यवस्था की आधारभूत कमजोरियां या हमारी मजबूती के बावजूद वैश्विक निवेशकों का पैसा बाहर निकालना क्या मुख्य कारक हैं लगातार इस बिकवाली
0: दो कारण आप कह सकते हैं लेकिन उसके पहले अगर हम फोन ले लें
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मेहुल गांधी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से बहुत बहुत स्वागत आपका मेहुल सवाल पूछिए मेहुल जी आप हमारे साथ जी आप जुड़ चुके हैं स्वागत है आपका
5: शिशिर जी
0: नमस्कार
5: हाँ नमस्कार मैं मेहुल गांधी बोल रहा हूँ क्रूड का प्राइस इतना बढ़ रहा है तो क्या हम लोग साइकिल नहीं इस्तेमाल कर सकते और क्रूड हम इंपोर्ट करने का बंद नहीं कर सकते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने का ऐसा रूल लागू नहीं कर सकते सरकार
0: मेहुल जी आपका सुझाव अच्छा है और मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में सोच सकती है लेकिन उसकी एक व्यावहारिक भी जो परेशानियां है वो भी आपको ध्यान में रखना है
1: और अब लौटते हैं अपनी चर्चा पर
0: ये जो दो बड़े मुद्दे इस समय में हैं बाजार के लिए पहला तो जो वैश्विक अनिश्चितता है वो आप ध्यान में रखें और जिसकी वजह से आप शेयर बाजार में आप जो है वो लगातार आपने गिरावट देखी है एक बड़ा मुद्दा यह है कि फेडरल रिजर्व ने एक संकेत दिए हैं कि वो ब्याज दरें बढ़ाएंगी और जब वो ब्याज दरें बढ़ाएंगे ये हमारे विदेशी निवेशकों के लिए कहते हैं यहां से पैसा ले जाने का रास्ता खोलेंगे और यही वजह है कि आप बाजार में थोड़ी जो है आप गिरावट देख रहे हैं
2: मीनवाइल अरिजीत जॉइंस अस फ्रॉम कोलकाता अरिजीत प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
6: Good evening, Market Mantra.
2: Good evening.
6: Ma'am, I wanted to ask you this, that a couple of years ago I heard the government of India has bought all the gold which was in London and US to back to India. Recently, the Prime Minister has said that not to go to US or anywhere or buy gold whatsoever. I wanted to understand from the expert that the emphasis which has been on gold and which is being in gold and there is a lot of complication by buying gold ETF, how all these things matter in the market.
0: Okay. Arijit ji, please remember that we import almost 800 tons of gold every year. That means we are spending a lot amount of dollars in that. So when we need more and more, less, when we are working on reducing the pressure on rupee, it is also necessary to reduce the import cost. And that is why we are focusing on reduction in the consumption of gold. That is the key reason for that.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चले हैं वैश्विक शेयर बाजार सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार वहां का प्रमुख शेयर बाजार दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज पिकवाली के दबाव में 3.3% से अधिक घाटे के साथ बंद हुआ उधर जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.8% की कमी आई गौरतलब है कि एंथ्रोपिक सीईओ डारियो एमोदेई द्वारा एआई विकास की गति धीमी करने संबंधी आग्रह के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में एआई और सेमीकंडक्टर से संबंधित कंपनियों में बिकवाली देखी जा रही है। एमोदेई के विचारों का समर्थन एआई से जुड़ी अनेक कंपनियों के प्रमुखों ने किया है।
2: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज मोर देन 3% टुडे आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन सऊदी अरेबियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अटैक्स ऑन शिप्स इन वेस्ट एशिया कंपाउंडेड सप्लाई कंसर्न्स। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.4% अप एट $108.22 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड एट अ टाइम ऑफ राइटिंग दिस रिपोर्ट। Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 3% higher at $103.11 per barrel.
1: श्रोताओं आपने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, आपका हमारी टीम की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आप श्रोताओं की ओर से शिशिर जी हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Country's retail inflation rises to 4.8% in August this year. Wholesale inflation stands at 9.92%. In Asian markets, South Korea's KOSPI declines over 3%. And global crude oil prices surge, Brent crude trading over $108 per barrel. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
7: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गणपति बाप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके जीवन से सभी विघ्न और संकट दूर कर दे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि और अपार खुशियां लेकर आए। ये गणेश चतुर्थी यही कामना करता है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जिसे आप ट्यून इन करते हैं। गीत मेरे मनमीत में आज आपके संग है अर्पना और वक्त हो गया है 11:45:17। अभी आपने सुना सुरेश वाडकर की आवाज में गीत, फिल्म का नाम है काल चक्र। और इसके बाद अगले दो गीत आपके लिए जो लेकर आई हूँ, उससे में पहला गीत जो है वो लता मंगेशकर की आवाज में होगा, संगीत खयाम का है और बोल गीत के लिखे हैं कैफे आसमी साहब ने, फिल्म का नाम है रजिया सुल्तान। और इसके बाद जो अगला गीत है वो भी संगीत खयाम साहब का है, लेकिन गीत के बोल लिखे हैं शहरयार ने और आवाज होगी आशा जी की, और इस फिल्म का नाम है उमराव जान। तो बैक टू बैक इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। गीत मेरे मनमीत आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये जगह है आपकी अपनी आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और वक्त हो गया है 11:55 और 40 सेकंड। अगला गीत होगा जिसका संगीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है, तो बोल है आरडी परमन का संगीत है, आवाज है किशोर कुमार की। और इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार, गीत मेरे मनमीत से। अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य से जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिकंधा लेकर मैं माधुरी हूं आपके साथ। जब दुनिया थम से जाती है और मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ता है तो न जाने फिर क्या-क्या होता है। रात है और आसमां पर सितारे मुस्कुराते हैं, चलो बंद आंखों में हम कुछ ख्वाब सजाते हैं।

रजनीगंधा फिल्म से गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। अब चलते हैं अगले गीत की तरफ, उससे पहले ये चंद लाइनें आपके लिए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहरे में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को चुपके से दवा मिल जाए।

जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल सुनी आपने फिल्म साथ साथ से। रात को जब चांद निकलता है दिल में एक दर्द मचलता है, ख्वाब जो अधूरे रह गए नींद में भी वो चलता है। जॉनी लिया साहब के लिखी ये चंद लाइनें जिनमें बहुत गहराई है। जॉन साहब का ये अंदाज हर बार दिल को झकझोर देता है। आपको क्या लगता है रात के इस पहर में ऐसी बातें क्यों याद आती हैं?

लता और किशोर की आवाजों में ये गीत सुना आपने फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से। भूलना भुलाना तो बस एक वहम है दिल का, कोई नहीं निकलता है दिल में एक बार बस जाने के बाद।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

जी आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये सफर है निशिगंधा का जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ और समय बता दें रात के 12:30 और हो गए हैं 47 सेकेंड।

लता जी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म मौसम से, संगीत मदन मोहन साहब का। आवारा हैं गलियों में मैं और मेरी तन्हाई, जाएं तो कहां जाएं, हर मोड़ पे है रसवाई। ये फूल से चेहरे हैं, हंसते हुए गुलदस्ते, कोई भी नहीं अपना, बेगाने हैं सब रस्ते। राहें हैं तमाशाई, राही भी तमाशाई, मैं और मेरी तन्हाई। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

घर की दहलीज अंधेरों से सजा देती है, शाम जलते हुए सूरज को बुझा देती है। मैं भी कुछ दूर तलक जाके ठहर जाता हूँ, तू भी हंसते हुए बच्चे को रुला देती है। हर कदम पे एक नई मुश्किल, एक नया चौराहा आता है और फिर नई मंजिल की तलाश शुरू हो जाती है। कुछ पता ही नहीं होता कि हमारे नसीब में क्या है, क्या मिलने वाला है और अगली राह पर क्या खो जाएगा।

फिल्म नसीब से ये गीत सुना आप सभी ने लता जी की आवाज में याद आना उसका महंगा पड़ गया रंग तन्हाई का फीका पड़ गया हर तरफ यादें ही थीं उस शहर में वहां जाकर मैं अकेला पड़ गया

एक बार मुस्कुरा दो फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में, ओपी नैयर का संगीत और बोल लिखे शिवान रिजवी ने। उससे मिलके तुझे मिला क्या, उससे मिलके तुझे मिला क्या है, भूल जा उसको सोचता क्या है। जिंदगी ख्वाब ख्वाहिशें खुशबू सब उसी का है, फिर मेरा क्या है। खुश रहूं उससे दूर रहकर भी ये दुआ है, तो बद दुआ क्या है।

और निशिगंधा का ये सफर भी यहीं समाप्त होता है आज. आप बने रहें आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल के साथ. कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढाल के बार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 3 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। महाराष्ट्र में प्रोफेसर भर्ती के लिए आवश्यक राज्य पात्रता परीक्षा सेट अब अगले महीने की 25 तारीख को आयोजित होगी। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सेट विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से परीक्षा की

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर माधुरी आपके साथ और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

ये प्यारा सा गीत सुन रहे थे आप मुकेश कुमार की आवाज में फिल्म अनीता से, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म मिलन से, और ये गीत भी मुकेश जी की आवाज में है।

बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं आप यहाँ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और पुनर्मिलन का गीत अभी आपने सुना और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और गीत पहुंच रहा है अब आप तक।

किस्मत फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप महेंद्र कपूर के आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ। ओपी नैयर का ही संगीत है लेकिन फिल्म है हावड़ा ब्रिज। आवाजें यहां आप सुनेंगे आशा मोहम्मद रफी साहब की और गाना होगा ये वाला।

पतंग फिल्म का ये गीत सुना आपने लता जी की आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ। अगला गीत हम आपके लिए लाए हैं फिल्म संगम से मुकेश की आवाज में, शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर चल रहा है गीत सुहाने का और उम्मीद करती हूँ कि आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। समय हो गया है रात्रि के 1:51 और 52 सेकंड। अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म लीडर से लेकर आ रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में, संगीत नौशाद साहब का।

0: सफर आज यही समाप्त होता है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के दौरान 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े काम किए गए। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार 50,000 रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त कार उपलब्ध कराएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा

व एआई से निर्मित और फर्जी है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और ये वक्त है कार्यक्रम रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ।

चलो मीत चलें दिन और रात की सरहद के पार जहां तुम रात को दिन कहो तो मैं मुस्कुरा दूं जहां सूरज से तुम्हारी दोस्ती बरकरार रहे और चांद से मेरी नाराजगी चलें दूर कहीं चांद के पास

हमसे जाओ ना बचाकर आंखें यूं गिराओ ना उठाकर आंखें खामोशी दूर तलक फैली है बोलिए कुछ तो उठाकर आंखें

लोरियां जल गईं भूख की आग में झूठ सच अनकहा अनसुना रह गया एक गुलफाम था एक थी जलपरी सारा किस्सा धरा का धरा रह गया कल जहां शहरे दिल था वहां आजकल खाक उड़ती है एक दस्ते तन्हाई है कौन किसको तसल्ली दे इस शहर में सिर्फ मैं और मेरा आईना रह गया

जी हाँ, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, और प्यार करने वाले कब डरा करते हैं। छोटे सी एक बात पे मंजर बदल गए, दामन फटा तो हाथ से रिश्ते निकल गए। सदशुक्र बेसलीब अंधेरे निकल गए, छत उड़ गई तो घर के मुकद्दर बदल गए। एक रोज तुमसे हाथ मिलाने की आरजू इतनी शदीद थी कि मेरे हाथ ही जल गए।

बिल्कुल, हमारी मोहब्बत भी आपसे कुछ इसी तरह गहरी गहरी और गहरी होती जाती है, लेकिन फिलहाल रात सुरमई से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है, तो विदा दीजिए माधुरी को। आप बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल।

0: बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट और टनकपुर महेंद्र नगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 38 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति में अगस्त में मामूली वृद्धि हुई है। वार्षिक आधार पर ये जुलाई में 9.78% से बढ़कर अगस्त में 9.92% रही। थोक मूल्य मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने 9% से अधिक रही। पांचवा जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा। उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब के अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw

3:10 और 30 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ड्यूएट प्रोग्राम हमराही। और दोस्तों उससे पहले बताते हैं कि ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर। आप सभी को हमराही कार्यक्रम में मेरा यानी अर्चना बिसारिया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कहते हैं कि झुमका अगर गिर जाए तो उसे उठाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक गिरता हुआ झुमका भी पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। तो चलिए आज की इस चंचल सी धुन में अदाओं की खनक और शरारत का रंग खोलते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा फिल्म जुगनू से।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: ये गीत अभी आप सुन रहे थे जुगनू फिल्म से, आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इश्क में जब दिल अपनी ही धुन पर चलने लगे तो फिर दुनिया की परवाह कहाँ रहती है। मार उठे या जमाना नाराज हो जाए, दिल तो बस अपने प्यार की सुनता है। तो चलिए इसी शरारती अंदाज और प्यार भरी मस्ती के साथ सुनते हैं एक बेहद ही खूबसूरत नगमा। फिल्म का नाम है दाग और आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

दोस्तों कहते हैं ना कि राज ढके छुपे ही अच्छे रहते हैं। कुछ बातें दिल में छुपे रहे तो राज खिलाती हैं और जब वही बातें जुबा तक आ जाएं तो कहानी बन जाती है। आज की महफिल में भी एक ऐसा ही राज खुलने वाला है। जी घबराइए नहीं, क्योंकि थोड़ी शरारत, थोड़ी मोहब्बत और ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ तो सुनते हैं ये गीत। फिल्म धर्मा का है और इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने।

कहते हैं मेरी सांसों में आज कोई खुशबू सी उतर आई है, मेरी सांसों में आज कोई खुशबू सी उतर आई है, जैसे किसी की मोहब्बत चुपके से करीब आई है। नजरें कुछ कहती हैं, दिल कुछ सुनाता है, एक अनजाना सा एहसास हर पल मुस्कुराता है। कभी हवाओं में उनका जिक्र महसूस होता है, कभी हवाओं में उनका जिक्र महसूस होता है, कभी खामोशी में भी उनका साथ महसूस होता है। मोहब्बत शायद इसी एहसास का नाम है, जहां बिना कहे भी दिल को किसी का पैगाम है।

0: बदलते रिश्ते फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि

0: एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: इस वक्त समय हो चला है 3:35:46। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारा ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। कहते हैं अपनों का साथ जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमतों में से एक है। जब दोस्ती साथ हो तो हंसी मजाक के छोटे छोटे पल भी यादों की बड़ी वजह बन जाते हैं। कभी साथ बैठकर बातें करना, कभी बेवजह हंसना और कभी एक दूसरे की टांग खींचना, यही तो दोस्ती की असली मिठास है। और ऐसे प्यारे रिश्तों को देखकर दिल से बस यही दुआ निकलती है, इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, ये साथ यूं ही बना रहे और हर दिन नई मुस्कान लेकर आए।

देश परदेश का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थी किशोर कुमार और मनहर उदास की। दोस्तों, कभी कभी किसी अपने के दूर चले जाने से सिर्फ दिल नहीं, पूरा घर सुना सुना लगने लगता है। वही इंतजार, वही खामोशी और यादों से भरी रातें। तो आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म नमक हराम का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने, और इस गीत को जैसा कि मैंने बताया ये एक विरह का गीत है। तो आइए यादों की इसी मीठी उदासी में हम भी डूब जाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

जब मौसम सुहाना हो फिजा में मस्ती हो और दिल में उमंग तो फिर एक डाल पर बैठा तोता भी प्यार की बातें करने लगता है शाखों पर चहकती धुंध हवाओं में मीठी बोली दिल ने भी आज कह दी एक छोटी सी बात भूली जहां प्यार हो और मुस्कान हो वहीं तो हर मौसम रंगीन हो जाता है तो आइए सुनवाते हैं आपको फिल्म चोर मचाए शोर का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने

दोस्तों कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं और दिल बस खामोशी से अपनी बात कहता रहता है। फिल्म जोशीला का गीत दिल में जो बातें हैं उन्हीं अनकहे एहसासों की खूबसूरत सी आवाज है जहां दिल की बात दिल तक पहुंचती है और इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

और इस कार्यक्रम को खत्म करने का अब समय आ गया है। चलते चलते बस यही कहेंगे कि कुछ मुलाकातें बस पल भर की होती हैं, लेकिन उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलना फिर बिछड़ना जिंदगी की यही तो खूबसूरत और थोड़ी उदास कहानी भी है। मुलाकात हुई तो लगा जैसे कोई अपना मिल गया, बिछड़े तो हर लम्हा एक याद बन गया। कुछ रिश्ते पास रहकर नहीं दूर होकर भी दिल में जिंदा रहते हैं। तो आप सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, फिल्म रॉकी से ये गीत हमने लिया है और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

0: पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति की स्वीकृति दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर कल जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 600 से अधिक भागीदार, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में 6 देशों और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक विशेष स्टार्टअप पवेलियन होगा। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। इसका संयुक्त आयोजन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सेमी मिलकर आयोजित करते हैं। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए मानवाधिकार विषय पर 5वें भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया। 5वां जम्मू फिल्म महोत्सव 17 सितंबर को शुरू होगा। उद्घाटन समारोह गुरुवार को सुबह 11 बजे राइटर्स क्लब के अभिनव थिएटर में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, कलाकारों और जम्मू कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। अरुणाचल प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने टोक्यो में ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 और 50 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम अरुणिमा और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना बिसारिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जिंदगी की राहों में कभी धूप होती है कभी छांव, लेकिन सफर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। अब जो गीत आप सुन रहे हैं ये है फिल्म हाउस नंबर 44 का, आवाज लता मंगेशकर की। ये गीत हमें जैसे याद दिलाता है कि रास्ते कितने भी अनजाने हो, हौसला साथ हो तो मंजिल की तलाश खूबसूरत बन जाती है।

कभी-कभी हम किसी के आने का इंतजार करते-करते यह भूल जाते हैं कि जिंदगी हमें खुद आगे बढ़ने के लिए बुला रही है हर रास्ते पर किसी का साथ मिले यह जरूरी नहीं कई सफर अकेले ही तय करने पड़ते हैं मंजिल भले ही दूर हो लेकिन पहला कदम हमेशा हमारे हाथ में होता है तो फिर इंतजार किसका चलिए अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत किशोर की कुमार की आवाज में

जिंदगी सिर्फ एक जगह ठहर जाने का नाम नहीं, ये तो नए रास्तों को देखने, नई जगहों को महसूस करने और हर सफर से कुछ नया सीखने का नाम है। तो आइए, अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म अराउंड द वर्ल्ड से, और इस गीत में ऐसी बातें हैं और जैसे ये हमें आवाज़ देता है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, तो क्यों ना अपने दिल की खिड़की खोले, नए अनुभवों को अपनाएं और ज़िंदगी की हर पल को उत्साह से जिएं।

दोस्तों कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां पीछे मुड़कर देखने के बजाय आगे बढ़ना ही बेहतर होता है कुछ रिश्ते कुछ यादें और कुछ पल हमारे साथ हमेशा रहते हैं लेकिन सफर तो आगे ही बढ़ता है उड़ान वही खूबसूरत है जिसमें हौसला हो और मंजिल वही खास है जिसे पाने के लिए हमने खुद पर विश्वास किया हो तो आइए दिल में उम्मीद और आंखों के सपने लेकर सुनते हैं ये सदाबहार नगमा लता मंगेशकर की आवाज में

सपने, वो खूबसूरत एहसास है जो आंखें बंद होने पर भी हमें एक नई दुनिया दिखाते हैं। कुछ सपने हमें मुस्कुराना सिखाते हैं तो कुछ हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की हिम्मत भी देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सपनों से हम थोड़े उदास भी हो जाते हैं। तो आइए अपने सपनों को ज़रा करीब से महसूस करते हैं और ये गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो हमारी सोच, हमारी दिशा और हमारा नजरिया ही बदल देता है। उस पल हम सोचते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन हम हर बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार अनजाने मोड़ ही हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां हमारी असली मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही होती है। तो बदलाव को स्वीकार कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए और हर नए मोड़ को एक नई शुरुआत समझिए।

दोस्तों जिंदगी में जीते तो सभी हैं, लेकिन असली जीत वही होती है जो हौसलों उम्मीदों और अपने सपनों के साथ जी जाए। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हालात चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने लेकर आए, हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, अपने सपनों से हारना नहीं है, क्योंकि जो इंसान मुश्किल के बीच भी उम्मीद का दामन थामे रखता है, वही अपनी कहानी को यादगार बनाता है।

कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां गम से बचना नहीं बल्कि हमें अपनी ताकत बनाना होता है। जो दर्द आज हमें कमजोर लगता है वही कल हमारी पहचान बन सकता है। बस कदम रुकने नहीं चाहिए क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह हमारा इंतजार करती है।

और चलते चलते बस यही कहेंगे कि जिंदगी में असली दौलत हमेशा सोना चांदी नहीं होती, असली दौलत वो है हौसला, जो मुश्किल वक्त में भी हमें मुस्कुराना सिखाता है। तो शिकायतों को आज थोड़ा पीछे छोड़िए, अपने सपनों को थोड़ा करीब लाइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे कीमती चीज है उम्मीद, हौसला और दिल की खुशी। आपका दिन भी मंगलमय हो इसी कामना के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आपको अभी सुनना है इस कार्यक्रम का अंतिम गीत भी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत

0: एक मंच पर लाने तथा सहयोग नवाचार विनिर्माण निवेश और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने का प्रमुख मंच है। तीन दिन के सम्मेलन में पैनल चर्चाएं और महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को साझेदारी निवेश प्रौद्योगिकी सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अवसर तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का साक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के अंतर्गत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर धोखाधड़ी से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उन्नत 1033 हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इन सुधारों से 1033 हेल्पलाइन को कॉल करने वालों की लोकेशन पहचानने, अलग अलग भारतीय भाषाओं में कॉल समझने और सही मदद को ज़्यादा तेज़ी से लोकेशन पर भेजना सुगम होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कार इक्काल में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it's important to recognize that this BRICS Summit was taking place in a very polarized world.
2: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts where there are very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was West Asia, Middle East conflict. We were able to get out a statement to which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
1: Condemning terrorism, Dr. Jaishankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has also won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded on Sunday. Prime Minister Narendra Modi had expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said, "The party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies." Mr. Modi said, "The people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double-engine government." The Reserve Bank of India has proposed a new framework under which banks will temporarily freeze only the disputed transactions.

5:10 और 50 सेकंड हुए हैं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और अब जो कार्यक्रम आप सुनेंगे उसे आप और हम बोलते हैं भोर सुहानी और इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर अर्चना बिसारिया आपका स्वागत करती हूं कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आशा भोसले के गाए कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत के साथ

अभी तो जी लें। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले के गाए इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं शागिर्द फिल्म का गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।